103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्य

0: राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन की शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरेना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन। भक्ति जीवन का एक ऐसा

ऐसा मार्ग है जो मन के विकारों को शांत करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति योग के 5 मुख्य भाव माने गए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और निरंतर स्मरण करना। चिंता और चिंतन, इन दोनों में बहुत फर्क है। चिंता व्यक्ति को कमजोर कर सकती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान आंख का काम करता है और भक्ति पैर का, जिससे भगवत पथ तय होता है। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर की भक्ति सच्ची भक्ति है। जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब हृदय में ज्ञान और ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है तब सारा अज्ञान और अंधकार समाप्त हो जाता है और अंधकार भी मिट जाता है।

भक्ति से बड़ी और कोई शक्ति नहीं। जहाँ भगवान की भक्ति है वहाँ सुकून है। भक्ति और भगवान के प्रति श्रद्धा से बड़ा कोई धन नहीं। भगवान तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ आस्था और भक्ति है। भक्ति से मन शांत होता है। जो इंसान भक्ति में डूब जाता है उसे दुनिया का डर नहीं होता।

भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए क्षमा एक अनिवार्य गुण है। भक्त को क्षमी अर्थात क्षमा करने वाला और अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगने वाला होना चाहिए। अहंकार का परित्याग कर क्षमा मांग लेने से चित्त की शुद्धि होती है। सच्चा भक्त वही है जो अपने हृदय के द्वेष मुक्त कर संबंधों में पुनः मधुरता स्थापित करें।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:40 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 205।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विफल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृप्रेम देख परम आनंदित हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 7:10 पर आप सुनेंगे जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर आप सुना करते हैं हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ प्याग। गाने सुहाने कार्यक्रम का समय रहेगा 8:30 पर। सुबह 9:00 सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुना करते हैं सुबह 10:00। पहाड़ों के सुर कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 10:30 पर। सुबह 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम महक पंजाब दी। पर आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:00 फौजी भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए। सुनो सखी ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 12:30 पर। एक बजकर 10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 5:10 पर आप सुनिएगा गैर फिल्मी भजन। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवा मंच 5:25 पर। 6:05 पर सुरमई सांझ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मौजांग राय दिया। खेतीबाड़ी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 7:10 पर। 8:00 आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और आज आप सुनेंगे अभिनेत्री महिमा चौधरी पर फिल्माए कुछ गीत। रात 9:30 पर आप सुनेंगे रंगे गजल। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे हिमाचली गीत। 10:30 का समय रहेगा चित्रपट संगीत का। आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:20 पर, 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 1 बजे शाम 5 बजे, शाम 7 बजे और रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर शाम 5:05 पर, 7:05 पर और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज एट 9 रिले किए जाएंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों पर।

0: अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 20,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और भीड़भाड़ कम करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करेंगी। इसके साथ ही मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर का विस्तार होगा। लगभग 1,021 करोड़ रुपए की लागत वाली अन्य 5 परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने लगभग 11,000 किलोमीटर लंबे सभी 7 उच्च घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर को चौगुना करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पहल के अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ये अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित किए गए। मंगलवार को भी MCD ने कार्रवाई करते हुए 17 संपत्ति को ध्वस्त किया और 5 अन्य संपत्तियों को सील किया था। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी इस यात्रा के दौरान सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विकास और सामुदायिक पहलुओं पर सहयोग की संभावनाओं का भी पता चलेगा। आगा खान विकास नेटवर्क के अध्यक्ष प्रिंस रहीम आगा खान उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के निमंत्रण पर इस महीने की 15 तारीख तक भारत दौरे पर हैं। केरलम में अलपुजा और एर्णाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पिछले 3 दिनों से पड़ रहा भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। शुक्रवार और शनिवार के लिए 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने आज से कल सुबह तक तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय इलाकों में ऊंची और समुद्र के कटाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ओपन टेनिस में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी सुनने वालों को। हाजिर हैं हम जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सुबह सुहानी के साथ, और आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम सुबह सुहानी की शुरुआत हम कर रहे हैं इस सुविचार के साथ। इंसान के अंदर अगर संतोष है तो वह सबसे ज्यादा अमीर है, अगर शांति है तो सबसे ज्यादा सुखी है, अगर दया है तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, और अगर स्वास्थ्य है तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। इसलिए श्रोताओं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और सबको खुश रखें।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं आपको इतिहास के पन्नों में, जहां आज का दिन विशेष बातों के लिए दर्ज है। जानेंगे ऐसी घटनाओं को जिनके कारण आज का दिन खास है।

जी हाँ, 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुए सम्मेलन में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना की गई। ১৯৭৬ में इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का अपहरण आज ही के दिन हुआ था। ২০০৮ में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन ने जिनेवा में दुनिया के सबसे बड़े पार्टिकल कोलाइडर लार्ज हेड्रन कोलाइडर का सफल प्रशिक्षण किया। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कनाडा ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1846 में एलियास होवे को सिलाई मशीने के डिजाइन का पेटेंट मिला। और इन्हीं जानकारियों के बाद फिर से मनोरंजन का वक्त हो गया है, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

जी हाँ श्रोताओ, मनोरंजन के बाद फिर से रुख करते हैं जानकारियों की ओर और बात करते हैं आज के दिन पैदा हुई कुछ महान हस्तियों की। दुनिया की मशहूर ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के सह संस्थापक और चीन के बड़े बिजनेसमैन जेक मा का जन्मदिन 10 सितंबर को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, का जन्मदिन भी आज के दिन ही हुआ था। जयम रवि, जो भारतीय सिनेमा विशेषकर तमिल फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता थे, उनका जन्मदिन भी आज ही के दिन 1980 में हुआ था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मनीष पांडे का जन्मदिन भी आज ही 10 सितंबर को मनाया जाता है। फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और अभिनेता अनुराग कश्यप का जन्मदिन भी 10 सितंबर 1972 को हुआ था। बाकी की जानकारियों से पहले फिर से रुख करते हैं मनोरंजन की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, अब आपको बताते हैं उन हस्तियों के नाम जिन्होंने आज के इस दिन दुनिया को अलविदा कहा। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जितेंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था, आज के दिन इस संसार को अलविदा कह गए। सुकुमार रॉय, जो कि भारतीय साहित्य के शानदार लेखक और कवि तथा मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के पिता थे, आज के दिन ही इस संसार को छोड़कर गए। ऑस्कर विजेता हॉलीवुड पटकथा लेखक और लेखक डॉल्टन ट्रम्बो भी आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और अब हम बात करेंगे आज के खास दिन की। जी श्रोताओं, आज है 10 सितंबर और इस दिन को मुख्य रूप से आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, आत्महत्या के बढ़ते मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा करने के लिए ये दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के सहयोग से ये दिन मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। श्रोताओं, जिंदगी इतनी अनमोल है कि इसमें सुख दुख, हंसी खुशी, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सब चलता रहता है, और एक के बिना हमें दूसरे की कीमत का पता भी नहीं लगता। इसलिए हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें, धैर्य और शांति समझ के साथ काम लें और जिंदगी के हर पल को खुशी के साथ बिताएं, क्योंकि

जी हाँ श्रोता, और अब लिए चलते हैं आपको देश दुनिया की खबरों की दुनिया में। छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सरकार देश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग योजना पर काम कर रही है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों पर से वित्तीय बोझ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सरकार ने युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए पीएम सेतु योजना के तहत 735.70 करोड़ के रणनीतिक निवेश प्लान को मंजूरी दी है। इससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की ओर आधुनिक बनाया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने एक बेहतरीन फैसला लेते हुए ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों से पढ़े छात्रों के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज में 15% सीटें रिजर्व करने का नियम बनाया है, जिससे गांव के प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देश में गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण को बेहतर बनाने के लिए 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जरूरतमंदों तक बेहतर और प्रोटीन युक्त आहार पहुंचाया जा रहा है। बात करें खेल समाचारों की, तो भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर वैश्विक मंच पर देश का नाम रोशन किया है। अब समाचार मौसम से संबंधित। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार 10 सितंबर तक प्रदेश के किसी भी जिले में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मॉनसून के कमजोर पड़ने और धूप खिलने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 11 से 13 सितंबर के बीच स्थानों पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ने के आसार हैं, जबकि 13-14 सितंबर से बारिश की गतिविधियों में फिर से हल्की तेजी आ सकती है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार।

सुबह सुहानी FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ प्याग।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर 7:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही

0: ही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्यजीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India

0: welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने

0: अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight, specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an all-American men's singles semi-final at US Open in New York.

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म आंटी नंबर वन के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। संगीत आनंद मिलिंद का है और गीतकार है समीर।

बिच्छू, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं श्वेता शेट्टी और हंसराज हंस की आवाजों में। संगीत आनंद राजानंद का है और गीतकार हैं समीर।

0: या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
1: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
0: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
1: रेबीज जानलेवा है लेकिन

0: समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
7: गाने सुहाने ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म बादल से। गायक कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसविंदर नुरूला और अनमोल मलिक। संगीत अनु मलिक का है और गीतकार हैं समीर।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
2: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
1: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओ, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिजा फिल्म से ये गीत। संगीत एक बार फिर से अनु मलिक का है और गीतकार हैं तेजपाल कौर। आवाजें हैं सुनिधि चौहान और करसन सरगठिया की।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला एसईएल टाइगर।

0: शेविंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जाल द ट्रैप फिल्म से ये गीत। गायक लगा रहे उदित नारायण, संगीत आनंद राज आनंद का और गीतकार हैं समीर।

0: श्रोताओं, ये थे कार्यक्रम गाने सुहाने की अंतिम प्रस्तुति। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रीना का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का गीतांजलि कार्यक्रम रहता है सजीव फोन इन यानी फोन पर आधारित। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं अपने विचार। किस विषय पर? जी हाँ, विषय बहुत ही रोमांचित करने वाला है, आपको यादों में लेकर जाने वाला है। यादें कुछ शरारती, कुछ खट्टी या कुछ मीठी। तो ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए बताती हूँ आपको आज का विषय है, और हमारा आज का विषय है हमारा बचपन और उससे जुड़ी खूबसूरत यादें। जी श्रोताओं, जीवन का वह अनमोल और सुंदर समय है बचपन, जिसमें हम सभी फिर से लौट जाना चाहते हैं। बचपन मासूमियत, बेपरवाही और सच्ची खुशियों से भरा होता है। तो कीजिए अपनी बचपन की खट्टी मीठी यादें हमारे साथ शेयर 01892224391 पर। जी हाँ, 01892224391। हेलो। हाँ जी नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: जी राकेश कुमार जी, कोटखाई से क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो घर पे रहते हैं, बागवानी करते हैं सेब की।
0: जी जी, तो आजकल सेब का सीजन चल रहा है?
1: जी अब तो समाप्त तो हो गया, और हाइट वाले इलाके में जो चल रहा है।
0: जी तो किस तरह का रहा ये सीजन आपका?
1: सीजन तो बहुत अच्छा रहा
0: जी। और आज का विषय सुना आपने?
1: जी जी, बचपन की यादें, शरारते।
0: बिल्कुल, तो आपकी शरारते और यादें सुनने के लिए हम बेकरार हैं।
1: जी जी जी जी, तो मैं पर तो मैं बचपन की याद तो है, हम क्या करते पहले, हम बचपन में एक खेल खेला करते, मैं और मेरी जो है कजन सिस्टर खेलते थे। ओ पहले दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, आप बीती वाला सीरियल।
0: जी
1: तो हम उसको देखते थे, तो हम क्या करते थे, जब सुबह हम उठते थे खाना खुना खा के हाथ मुंह धो के, तो जैसे कि छुट्टी का दिन होता था, जब हम क्या करते थे, हम उस सीरियल का जो है एक्टिंग करते थे, हम खेलते थे और बहुत अच्छा लगता था। और शरारती की बात ऐसी, तो बचपन में मैंने ऐसी शरारती की थी, वो शरारती जो है आज तक जो है जिंदगी में सबक बनी हो, और वो शरारती जो है सबक बन गई थी हमारे।
0: जी ऐसी कौन सी शरारत थी आपकी?
1: जी ऐसा हुआ था, और मेरी मम्मी ने मेरे को रखा था घर पे। तो उन्होंने बोला कि आप आकाशवाणी शिमला आता था पहले, कि इसमें गाने सुनो, मैं तब तक आती हूँ। मैं बोलो आपके मेरे भाई बहन को फूल छोड़। मैं कहा ठीक है। तो आकाशवाणी शिमला पे स्वयं संगीत चल रहा था। पहले क्या होता था, पहले 9:30 तक तो प्रोग्राम चला था, 9:30 बंद होता था पहले।
0: जी
1: हाँ, तो आकाशवाणी शिमला में का ठीक है, तो 9:30 प्रसारण बंद हो गया, तो मैंने रेडियो बंद कर दिया। तो मैं वेट करता रहा कि भाई मम्मी नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, जो गैस की जो गैस नहीं होती गैस,
0: जी जी,
1: ओ मम्मी ने रेगुलेटर से बंद नहीं किया। तो मैंने क्या क्या जो गैस की पाइप जो है वो खींच दी।
0: अच्छा,
1: वो गैस की पाइप खींच दी, तो उसमें जो जैसे गैस की पाइप खींची, तो उसमें जो है सिलेंडर की हवा आने लगी, उसमें जो रेडियो की तरह शर शर की आवाज आ रही है
0: जी
1: ऐसा तो मैंने सुना था कि गैस में फंसेगी तो फटेगा, तो मेरे को लग गया डर, तो मैंने क्या किया और मैं गया बाहर।
0: अच्छा
1: बाहर गया वहां मैं रोने लगा, बच क्या क्या करूँ, मेरे साथ तो ये पंगा हो गया और मैंने ये क्या कर दिया। तो फिर उधर पड़ोस के आए, बोलो क्या हुआ क्यों रो रहा है, बोलो मुझे भूख लगी। अगर मैं ऐसा बता देता कि मेरे से ये गलती होगी तो उसने पाइप लगा दे तो कुछ हो जा मतलब बच जाता कुछ,
0: लेकिन आपने बात को टाल दिया।
1: मैंने बात को टाल दिया इसलिए कि मेरे को पड़ेगी डांट।
0: जी
1: तो फिर ओ फिर ठीक है, बोलो मैं मेरे को मिल जाएंगी तेरी मम्मी मैं बोल दूंगा। तो उसने बोल दिया कि बेटा आपका बेटा बाहर रो रहा है। तो मम्मी आई, बोलो क्या हुआ। मम्मी को बोला मैंने, मैं मेरे को भूख लगी। अरे भूख लगी तो बोलो बस आने वाली थी, बोलो चल बोला आ जा खाना खा रही, नहीं आया मैं। अरे जब बोलो मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। तो फिर मैं कह क्या बात है, फिर मम्मी गई अंदर देखा कि मैं कहा ये कहीं रेडियो की आवाज आ रही है, तो रेडियो देखो रेडियो बंद पड़ा है। देखा उधर गैस का जो है पाइप निकाली हुई, तो उधर जो पाइप निकाली हुई तो फिर देखा, फिर मारना क्या था, फिर तो मैं पैर रो गया था। तो फिर बोला

0: हमने तो ये क्या क्या तेने बोला, ये क्यों क्या तेने बोला सा। अरे वो मेरे को क्या पता था और मैंने निकाल दिया। अगर निकाल तो दिया था तो उसको बोलना था कि क्या बोलते इसको लगा दो, मेरे से ये निकल गया। तो उसने लगा
1: जी
0: देनी थी, आधा गैस वाल खत्म कर दिया। ये तो शुक्र मानो अगर हीटर या कुछ चीजें थी तो आग पकड़
1: कोई
0: जाए,
1: दुर्घटना
0: वरना
1: नहीं
0: घटना
1: हुई है ना
0: नहीं हुआ,
1: जी जी और
0: घटना नहीं
1: इस
0: हुई।
1: शरारत से या छोटी सी जो आपकी भूल थी उससे आपको एक सबक भी मिला।
0: हाँ सबक तो मिला, तो उसके बाद फिर मैं और शरारती नहीं करता मैं। उसके बाद फिर मैंने
1: शांत हो
0: नहीं
1: गए
0: नहीं
1: आप?
0: शांत हो गया ना, तो मैं शरारती करता, कभी मैं रेडियो खराब करता था, कभी मैं टीवी खराब करता था,
1: जी
0: लेकिन मैंने
1: जी
0: पहली बार जो है गैस के साथ छेड़खानी की थी
1: जी जी
0: बचपन में।
1: बिल्कुल, इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए और ये भी सीख हमें मिलती है ना राकेश जी। जी
0: जी, तो
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा
0: सीख
1: लगा
0: मिल
1: आपसे आपकी शरारतें जानकर, और लगता है रेडियो का साथ आपके साथ बचपन से ही जुड़ा है।
0: जी। मैं बचपन से रेडियो सुनता था, लेकिन पहले फोन नहीं करता था, क्योंकि पहले फोन हमारे पास फोन का साधन नहीं था, अब तो मोबाइल है
1: जी जी
0: और रेडियो, तो मैं
1: बिल्कुल,
0: बचपन से सुनता था।
1: तो यूं
0: जी
1: ही
0: जी
1: हमेशा जुड़े रहें हमारे साथ, और शुक्रिया कॉल के लिए
0: जी जी धन्यवाद।
1: जी। धन्यवाद। तो जी हाँ श्रोताओं, हम तैयार बैठे हैं आपके बचपन की शरारतें जानने के लिए, और उसके लिए आपको डायल करना है स्टूडियो का नंबर 01892224391।
2: हेलो,
1: हेलो,
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग जी, नाम बताइए अपना।
2: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: जी जोगेश जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
1: जी और क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के विषय पर?
2: बचपन की तो ऐसे बहुत यादें हैं, और हमारे समय का बचपन तो आज की थोड़ी सी आधुनिकताओं से थोड़ा सा दूर ही रहा है।
1: रोशनी डालना चाहेंगे
2: पहले
1: किस तरह से बदलाव देखते हैं आप आज के बचपन में और अपने बचपन में?
2: हमारे बचपन में ज्यादातर जो हमारा खेल कूद होता था वो आउटडोर होता था, कहने का मतलब ग्राउंड में या घर के बाहर या प्रकृति के बीच में।
1: जी बिल्कुल,
2: आज कहीं ना कहीं इन चीजों में बदलाव आया है, और जो चीजें हम बाहर बैठ के खेलते थे वो थोड़ा सा एक मोबाइल में सिमट सा गया है।
1: सिमट गई हैं, है ना?
2: और पहले जो एक जुड़ाव होता था प्रकृति से हमारा निकट का, तो वो थोड़ा सा कम हुआ है। और इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़े शारीरिक और मानसिक रूप में भी थोड़ी सी बदलाव आया है,
1: बिल्कुल, तो मिस करते हैं आप
2: क्योंकि
1: उस समय को?
2: बिल्कुल बिल्कुल पहले के समय में मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाना, नाव चलाना और झूला झूलना, और मतलब खेल कूद तरह तरह के, तो ये सारी चीजें आज एकदम सीमित रूप में देखने को मिलती है।
1: जी, आपकी कोई खास याद जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे?
2: खास यादों में यही है जो सब बताए हैं, हमारे तो पर्याप्त मित्र रहे थे बचपने में, और आज भी वो मित्र हमारे साथ हैं, तो यही कहेंगे कि वो समय काफी अद्भुत था और लौट के आ जाए ऐसी कामना करते हैं।
1: बिल्कुल, कई बार अनायास ही हमारे मुंह से निकल आता है कि कोई लौटा दे हमारे बचपन के वो दिन, है ना
2: जी,
1: जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हमें कॉल की, अपने विचार साझा किए, धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: एक सौ 3.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि, और आज के इस अंक में आपसे हम जानना चाह रहे हैं आपके बचपन की कुछ खट्टी मीठी सी यादें। हेलो हेलो हेलो जी हाँ श्रोताओं, जब भी आप हमें कॉल करें तो सिग्नल का ध्यान जरूर रखें ताकि आपसे हमारी बात अच्छे से हो पाए। और जब तक आप मिलाते हैं हमारे स्टूडियो का नंबर, तब तक करते हैं मनोरंजन इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ।

0: वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, हर पल अनमोल थी बचपन की वह कहानी। जी हाँ सखियो श्रोताओं, बचपन हम सभी का बहुत ही अनमोल होता है और इसी विषय पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: श्री राम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील खासी गांव कंठी से।
0: जी श्री राम जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ दीदी जी, आप सुनाइए।
0: जी हम भी बहुत बढ़िया हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी जी।
0: जी तो कहिए, क्या कुछ हमारे साथ साझा करना चाहते हैं अपने बचपन के बारे में?
1: दीदी जी, बचपन में तो थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा शरारतें की जाती, तो आजकल ऐसा नहीं होता जैसे पहले होता था। आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं।
0: तो वो बचपन ही क्या जिसमें शरारतें ना की जाए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आजकल के बच्चे तो समझदार है, ऐसा नहीं करते।
0: जी आजकल के बच्चे तो घर पर रहने वाले हैं।
1: हमारा जो समय था थोड़ा शरारती, जब हम रखते थे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते, फिर ठीक हो जाते, उसी पल खेला करते।
0: जी तो कोई ऐसी शरारत जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें?
1: ऐसा है कि हम जब रेडियो तो हमारे बचपन में ही कहना करता था हमारे नाना जी के साथ। हम भी सुनते कभी कभी, हम सोचते जब रेडियो बजता तो हम सोचते इस रेडियो को तोड़े और यहाँ और हमारे साथ बात करें।
0: तो आज वो समय है जब आप रेडियो पर बात कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है फिर?
1: आज आज आज ये रेडियो हमारा गुरु भी है, हमारा साथी भी है, हमारा शिक्षक भी है। हमने रेडियो से बहुत कुछ पाया है
0: जी।
1: अगर जो कुछ है आज हम किसी से बात करते हैं तो रेडियो की बहन है, आकाशवाणी की बहन है। तो मैं आकाशवाणी के सभी केंद्र के प्रस्तुत करता हूँ, वो जो पहले थे जो आज है, सभी को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने हमें कॉल की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कहते हैं ना श्रोताओ, जिंदगी के सफर में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन बचपन की यादें कभी पीछे नहीं छूटती। वो कई बार अनायास ही हमारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आती हैं। तो आप भी लेकर आइए मुस्कान हम सभी के चेहरों पर और सुनाइए अपने बचपन की कुछ यादों को। हेलो
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला कांगड़ा गांव गुरकुड़ी से गोल्डी बात कर रहा हूँ, आपका नाम श्रोता
0: जी। गोल्डी जी, कैसे हैं आप?
1: ये बहुत अच्छे हैं आपकी दुआओं से
0: जी। कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा विषय रखा है
0: जी, धन्यवाद
1: जी। जी
0: क्या कुछ कहना चाहते हैं, कौन सी शरारत साझा कर रहे हैं?
1: जी मैम, मैं बचपन में था तो मेरा एक ताऊ का लड़का लगता है, तो मेरे ताऊ का लड़का है तो मेरे से 14 दिन छोटा है
0: जी।
1: तो घर वाले कुछ काम कर रहे थे तो हम एक बोलते हैं वो रखी थी जो अंग्रेजी खाद होती है उसकी जो बोरी थी वो रखी थी, तो मुझे लगा कि चीनी, तो मैं खुद भी खा रहा था उसको भी बोरा था तो भी खा ले चीनी है तो वो भी खा रहा था। चलो मम्मी ने देख लिया टाइम रहते तो जल्दी जल्दी पता नहीं हमें कौन नींबू पानी वगैरह पिलाया, पता नहीं क्या क्या किया। तो अगर थोड़ा ज्यादा खा लेते, अगर वो नहीं देखते तो शायद
0: तब तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जानी थी।
1: चलो बचपन मुझे तो याद भी नहीं है मगर घर वाले सुनाते इस बात को, तो ये हमने बहुत

0: जैसे अपनी जान के साथ हमने मतलब वो किया था खिलवाड़।
1: जी जी ये तो बहुत मुश्किल हो जानी थी है ना।
0: मानो कि हमने थोड़ा सा खा भी लिया, सरकार वालों को पता नहीं लगता, तो सरकार वालों ने सोचना इनको पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो असली बात का पता नहीं होना था अगर उनको नजर नहीं पड़ती।
1: जी जी तो काफी शरारती थे आप मुझे लगता है।
0: जी जी जी
1: जी
0: तो
1: बहुत
0: मैम बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बाकी ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, अन्य श्रोताओं को भी मौका दूंगा।
1: जी जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और आपने हमें कॉल किया अपनी इतनी अच्छी शरारत और
0: धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

जी हाँ श्रोताओं, बचपन वह खूबसूरत दौर है जहाँ खिलौने कम थे तो क्या हुआ, खुशियाँ बहुत थी। जहाँ जेब में पैसे कम लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जहाँ दोस्ती में कोई मतलब नहीं था और नाराज़गी भी कुछ ही मिनटों की होती थी। तो ऐसा ही होता था बचपन का दौर। और कभी रूठना, कभी मनाना, कभी हंसना, कभी खेलना, तो सभी की बचपन की बहुत अच्छी मीठी यादें होती हैं। और इन्हीं यादों पर आज हम आप सब श्रोताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम को अभी रोकने का वक्त है क्योंकि आपको लिए चलना है आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में समाचारों के लिए। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकते हैं 9:30 पर।

प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान करेगी शुरू। शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज, दोनों दलों ने किए जीत के दावे। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धर्मशाला में RCET निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। और हमीरपुर जिले के 402 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मजबूत करने के लिए निपुण मेले किए जाएंगे आयोजित। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जनभागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।

0: लंबे इंतजार के बाद शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज होगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में इन पदों के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर दी है। बचत भवन में चुनाव के लिए मत पेटियां रखी गई हैं। उल्लेखनीय है कि बीते 31 मई और 1 जून को जारी हुए जिला परिषद चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कुल 25 सदस्यों वाले जिला परिषद शिमला में बहुमत के लिए 13 सदस्यों का आंकड़ा छूने के लिए कांग्रेस और भाजपा को अब निर्दलियों का सहारा है। जिला परिषद चुनाव जीतकर आए 4 निर्दलीय आज होने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं। जिस पार्टी को भी इनका समर्थन मिलेगा वह जीत हासिल कर लेगी। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने में पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी RCT महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में धर्मशाला में भी ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 30 बैचों में 838 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। अब इस वित्त वर्ष में 1000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: धर्मशाला के सिद्धवाड़ी की सुनीता कुमारी ने गहने डिजाइन करने का प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। डाट की रेखा देवी ने प्रशिक्षण के बाद ब्यूटी पार्लर शुरू किया। वहीं जमानाबाद की प्रेमलता और सुदेशना कुमारी ने अगरबत्ती और धूप बनाने का प्रशिक्षण लेकर महिला मंडल समूह के साथ स्वरोजगार शुरू किया। RCT से अब तक 394 प्रशिक्षण बैचों में 10,620 युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संस्थान में मशरूम उत्पादन, ब्यूटी एवं पर्सनल केयर, जूट उत्पाद, अगरबत्ती निर्माण, कटिंग, टेलरिंग, मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर, कृषि उद्यमिता और बैंक मित्र सहित कई रोजगार पर प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान रहने और खाने की व्यवस्था भी निशुल्क रहती है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। यह दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भावनात्मक तनाव और कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को समय पर सहयोग, समझ और उचित देखभाल की जरूरत होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना उसे मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
2: अरे वो देखो, औरत दर्द से तड़प रही है, क्या करें?
3: अरे भाई देखते क्या हो, तुरंत 108 पर फोन लगाओ।
4: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108, किसी भी आपातकालीन स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, अगजनी व पुलिस सहायता के लिए आप टोल फ्री नंबर 108 पर डायल करें। यह सेवा निशुल्क है और अभी तक लाखों लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमे गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमीरपुर जिले के 402 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए निपुण मेले आयोजित किए जाएंगे। मेलों में गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय से जुड़ी गतिविधियां खेल खेल में करवाई जाएंगी। पंचकोशीय विकास के लिए 5 अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें अध्यापकों के साथ विद्यार्थियों की माताएं भी भाग लेंगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
6: जिले के 402 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए निपुण मेले आयोजित किए जाएंगे। 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों का अंक, गणित, पढ़ने और लिखने की दक्ष बनाने पर विशेष जोर रहेगा। शिक्षा विभाग ने गतिविधियों के आयोजन को लेकर सभी स्कूल प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कक्षा स्तर के अनुसार अलग अलग समय पर गतिविधियां करवाई जाएंगी। निपुण भारत मिशन के तहत गणित में जमा घटाव, अंग्रेजी में शब्द ज्ञान और हिंदी में सही उच्चारण और लिखावट से जुड़ी गतिविधियां होंगी। निपुण मेले के बाद विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और बुनियादी ज्ञान का आकलन करने के लिए टेस्ट भी लिया जाएगा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में जिला प्रशासन ने राशि लिंगर मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर जरूरी अलर्ट जारी किया है। आगामी 14 से 25 सितंबर तक इस मार्ग पर नियंत्रित ब्लास्टिंग का काम किया जाएगा। यह ब्लास्टिंग

0: दोपहर 2 से 3 बजे और शाम 6.5 से 7.5 बजे के बीच होगी। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत ब्लास्टिंग के समय मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस दौरान इस क्षेत्र से दूर रहें, पुलिस व प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश की देव संस्कृति, भाईचारे और अन्य प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत पर हिमाचल में बनी फिल्म खूंटा देशभर के सिनेमाघरों में 18 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म की निर्माता, निर्देशक व एक्टर अनुशी शर्मा ने सोलन में फिल्म का टीजर जारी होने के मौके पर कहा कि ये फिल्म हिमाचल की देव संस्कृति के अलावा प्रदेश में भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले हिमाचल की कोई भी फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई है, ऐसे में खूंटा फिल्म देशभर में हिमाचल का मान बढ़ाएगी। मणिमहेश यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत गागला के तहत कुराहा गांव में NH 154A के तहत महिला पुल के समीप करीब 1 किलोमीटर के दायरे में 5 लंगर लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने लंगरों की व्यवस्था को लेकर यातायात, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी समस्याएं प्रशासन के समक्ष उठाई हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 5 लंगर होने से हाईवे पर श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। इससे कई बार जाम जैसी स्थिति बन रही है और स्थानीय लोगों को अपने खेतों तक आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इन अनुमतियों की जांच करने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, पेयजल स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था करवाने तथा लंगर कर्मचारियों के सत्यापन की मांग की है, ताकि मणिमहेश यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से मुलाकात पर पंजाब केसरी की सुर्खी है। हेलीपोर्ट निर्माण के लिए हिमाचल को वित्तीय सहायता देगा केंद्र। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, गगल एयरपोर्ट के विस्तार को दिल्ली में मिली रफ्तार। हिमाचल दस्तक लिखता है, 2 माह में बनेगी कांगड़ा एयरपोर्ट की टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट। दैनिक जागरण की एक खबर है, हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल लटका, अब सितंबर के बाद निर्णय संभव। अमर उजाला की सुर्खी है, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में फूड लाइसेंस पर दवा बनाने का खेल बेनकार, 26,40,000 टैबलेट जब्त। जबकि दैनिक भास्कर ने लिखा है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज, दवा निर्माता कंपनी की तलाश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान करेगी शुरू। शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज, दोनों दलों ने किए जीत के दावे। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धर्मशाला में RCET निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। और हमीरपुर जिले के 402 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मजबूत करने के लिए निपुण मेले किए जाएंगे आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11 बजे। नमस्कार।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग। जी हाँ श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम फिर से लौट आए हैं 1900 गलियों में, जहाँ हमारी मासूमियत, हमारी शरारतें और हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हमारा पूरा संसार थी। तो आप भी कीजिए शेयर हमारे साथ अपने बचपन की यादें 01892224391 पर। हेलो हेलो,

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी, उज्जैन से बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के विषय पर?
1: जी, बताना चाहेंगे, बचपन की जो शरारत होती है ना, उसमें काफी, मतलब छोटे बच्चे हमारे हैं, उनमें काफी नोकझोंक भी होती है, और एक दूसरे से, मतलब फिर नोकझोंक होने के बाद में वापस, मतलब है ना, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं,
0: जल्दी ही मान जाते हैं।
1: जी हाँ
0: जी, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है बचपन में?
1: जी बिल्कुल हुआ है, कई बार हम अपने बच्चों से या हमारे जो छोटे भाई बहन थे ना, तो एक दूसरे में नोकझोंक होती थी और एक दूसरे के कापी किताब भी छीन लेते थे, और फिर मतलब छुपाने के बाद में वापस उन्हें बता भी देते थे, हमने वहाँ पे रखा है, ऐसे किया है।
0: जी, तो ये बहुत अच्छा समय था, है ना? दिल में कोई मैल नहीं था, कोई शिकायतें नहीं थी, एक दूसरे के साथ झट से रूठ जाते थे तो फटाफट मान भी जाते थे।
1: जी बिल्कुल
0: जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल की आपने, शुक्रिया।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: जी हाँ श्रोताओं, कहते हैं ना, जिंदगी के सफर में बहुत कुछ पीछे नहीं, पीछे छूट जाता है, लेकिन जो नहीं छूटता है वो है हमारे बचपन की यादें। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
5: मैडम, नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूं, गोपालपुर सरकाबाद से।
0: जी नेगी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद मैडम जी, बचपन की यादें आपने बहुत पीछे पहुँचा दिया हम लोगों को आज।
0: जी तो कौन सी यादें आप अभी तरोताजा हो गई?
5: बस मैडम जी, दुनिया भर की यादें, वो पड़ोसियों की घंटी बजाना और भाग जाना, वो शरारतें करना, वो आजकल के बरसात के दिनों में खड्ड नालों में जो नेचुरल स्विमिंग पूल होते हैं उनमें घंटों घंटों नहाते रहना, पेड़ों पे चढ़ना, आम तोड़ने, अमरूद तोड़ने,
0: चुरा कर खाना, है ना,
5: चुरा कर खाना। आजकल छल्ली का मक्खी का मौसम है, काकड़ियां खेतों से भरी होती थी, तो स्कूल से जब आता, आते आते जब भी भूख लगनी तो बस ये नहीं देखना कि किसका
0: खेत है। जी जी,
5: तो भले ही अगले दिन गुरुजी का ही खेत हो, और पिटाई भी भरपूर होती थी,
0: या तो फिर घर पर शरारत जो है हमारी पहुंच जाती थी,
5: घर में भी पहुंचती थी और स्कूल तक भी पहुंच जाती थी। जी
0: जी जी बिल्कुल,
5: उन दिनों पुलिस का डंडा नहीं, अब तो पुलिस का डंडा और मास्टर जी का चंडा बंद हो गया, उन दिनों डंडा और चंडा दोनों मास्टर जी का ही चलता था। जी
0: दोनों चलते थे और अच्छा भी लगता था, एक डर सा भी रहता था, है ना।
5: बिल्कुल मैडम जी, जिन टीचर्स ने हमें ज्यादा पीटा है उनको हम बस स्टैंड पे कहीं दिखाई दें तो दूर से जाते हैं उनके मत्था टेकने। जी
0: जी,
5: और उनके ही आदमी बनाए हुए हैं ऐसा लगता है आज की तारीख में तो।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात कही आपने निगी जी, और बहुत अच्छी बातें साझा की, धन्यवाद आपका।
5: और मैडम जी, दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगा।
0: जी,
5: ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी,
0: जी जी,
5: मगर मुझको लौटा दो वो बचपन के दिन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
0: जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है आपने की, धन्यवाद निगी जी। जी श्रोताओं, आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं 01892224391 पर, और आप हमारा ये कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। हेलो,
6: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, किससे बात हो रही है?
6: जयकरण सराफ से।
0: जी जी जयकरण जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आज?
6: देखो, बचपन तो होता ही शरारतों से भरा हुआ है।

0: और हम तो ऐसे पड़ाव में आ चुके हैं अब कि बचपन की बहुत याद आती है।
1: जी आप भी सोचते हैं कई बार कोई लौटा दे वो बचपन के दिन?
0: दिन सोचते हैं, भी गाना भी सुनते हैं उसी को ज्यादातर।
1: अच्छा, क्या कुछ ज्यादा याद आता है?
0: हाँ जी हाँ जी,
1: क्या कुछ ज्यादा याद आता है?
0: मैं सिर्फ आपको दो पंक्तियां जो गीत के माध्यम से सुनाना चाहूंगा।
1: जी,
0: बचपन चला गया जवानी चली गई, जिंदगी दिया करी निशानी चली गई।
1: जी तो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पंक्तियां है ये, है ना?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दियां गलियां दी
0: गलियां दी।
1: जी जी जी, जयकरण जी बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके और आपने हमें कॉल की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: जी हाँ श्रोताओं, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें समय कभी मिटा नहीं पाता। बारिश की बूंदे, कागज की कश्ती और बचपन की वो छोटी सी खुशियां आज भी मन को मुस्कुरा देती हैं। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: विनोद बोल रहा हूँ जी, रैत से।
1: जी विनोद जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है जी।
1: जी क्या कुछ कहना चाहते हैं आज?
2: वैसे तो आपका जो विषय है वो तो ऐसा है कि जो बचपन की यादें हैं ना जी, वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ एक जो चुनिंदा होती हैं जो हमारे दिमाग में चली रहती हैं, जब फ्री में बैठे होते हैं तो उनके बारे में सोचते हैं।
1: जी सोचते तो हैं, मुस्कुराते हैं।
2: हाँ मुस्कुराते भी हैं और सोचते भी हैं कि हमारे साथ उस वक्त क्या हुआ था।
1: जी तो यह कई बार ऐसा भी लगता है कि हम क्या करते थे उस समय।
2: जी जी जी जी
1: जी,
2: तो ऐसा ही एक छोटा सा किस्सा है, मेरे साथ भी हुआ था जी।
1: वैसे
2: तो बहुत सारे हुए लेकिन वो एक ज्यादा ध्यान में आता है
1: जी।
2: तो बचपन में जैसे ही हम स्कूल से आते थे तो घर वाले सभी गर्मियों के दिन में सो जाते थे, तो हम भी उनके साथ तब तो सो जाना, और जब वो सो जाते थे तो हमने चुपके से उठना, और हमारे गाँव, वैसे मूलतः हमारा गाँव पड़ता है कांगड़ा के साथ, गाँव पड़ता है नंदरूल
1: जी,
2: तो वहाँ खड्डा है तो वहाँ नहाने चले जाते थे।
1: जी
2: तो एक बार अकेला वहाँ खड्ड में नहा रहा था, कोई भी नहीं था, और मैं उस वक्त बचपन था तो कपड़े हम सभी खोल देते थे, बिल्कुल नंगे नहाते थे
1: जी।
2: तो हमारे एक पड़ोसी थे, वो उन्होंने देख लिया मुझे नहाते हुए और चुपके से कपड़े उठा के घर में पहुँचा दिए
1: जी।
2: और घर खड्ड से काफी दूर था तो बीच में गाँव घर भी आते थे, तो बाहर निकला तो कपड़े मिले नहीं, और फिर मैं वैसे ही घर के लिए चल दिया
1: जी।
2: और छुपके छुपाते हुए तो बड़ी मुश्किल से घर में पहुंचा और कुछ ना कुछ डाला। तो जब ये बातें जब ध्यान में आती हैं तो लगता है कि हम, हमारा बचपन कैसा निकला।
1: और आपकी, आपको टोकना चाहूंगी, आपकी इस शरारत से बहुत लोगों की शरारतें या ये वाली यादें जो है वो ताज़ा हो गई होंगी। मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी ऐसी याद है जैसा कि आपने बताया है ना, क्योंकि बरसात के दिनों में सभी नहाने जो है वो छुप छुप के ही जाते थे, पेरेंट्स मना करते थे, है ना
2: जी।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी यादें जानकर और बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ठीक है जी, धन्यवाद
1: जी। धन्यवाद। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
3: डिंपल कुमार बोल रहा, सराह से मैम।
1: सराह से डिंपल जी, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया
1: जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं?
3: बात बचपन के बारे में चाहना था सर।
1: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल हम सुन रहे हैं।
3: हाँ जी हाँ जी,
1: सुनवाइए।
3: बचपन तो आजकल तो बचपन तो बहुत अच्छा निकाला हमने। हाँ जी हाँ जी,
1: तो क्या कुछ सुनाना चाहते हैं आज, कौन सी ऐसी याद है?
3: बचपन तो बहुत ही अच्छा, आप तो आजकल तो बच्चे गाय नहीं मन रहे मैडम जी।
1: जी
3: हाँ जी हाँ जी, आज हमने बचपन निकाला, हमारे को पता है।
1: बिल्कुल, कैसा बचपन निकाला है आपने?
3: बस मैं ना घर वालों के जो करना वो पूरा बनते थे,
1: पूरी मस्ती करते थे।
3: हाँ जी हाँ जी
1: जी, बिल्कुल।
3: आजकल तो माँ बाप का डर नहीं है बच्चों को।
1: चलिए,
3: मानते नहीं है ना।
1: बिल्कुल, सभी की अपनी अपनी
3: अपनी मर्जी से कमाना मैम।
1: चलिए कोई बात नहीं, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है ना।

0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद
0: थैंक
1: कॉल
0: यू
1: के
0: मैम,
1: लिए
0: थैंक यू,
1: जी।
0: ठीक मैम।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जी हाँ श्रोताओं, सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: मैं जवारी से बोल रहा हूँ
1: जी। नाम बताइए अपना।
3: जरनैल सिंह।
1: जरनैल सिंह जी, ऐसी कौन सी याद है बचपन की जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं?
3: मैं सुनाता हूँ, सामने 1969 की बात है। 1969 मेरे डैडी जो एक्सपायर हो चुके थे। घर में गरीबी थी, जमीन बहुत है हमारे पास।
1: अच्छा, जमीन बहुत है,
3: पैसा नहीं मिलता था। तो हमने दो तीन दोस्तों को इकट्ठा किया और हमने बोला बिल्डिंग फंड देना है, यहाँ सेंटर बन रहा है जवाली में।
1: अच्छा,
3: एक प्रतिन तो मैंने उन दोस्तों ने बोला, मेरे भाई ने पता नहीं कहा होते उधार पैसे दिए। और जब भाई को पता चल गया कि ये तो फ्रॉड है, 6 रुपए लिए, 1 रुपया फीस होती थी हमारे 8 मिनट तक।
1: अच्छा,
3: तो जब भाई को पता चल गया तो मुझे पकड़ा और मिर्चों की, मिर्चें नहीं होती हमारी देसी,
1: जी जी,
3: और चादर उड़ा के मुझे आग में गिरा कर इतनी धुनी दी, आज तक याद आता है
1: जी। और उस धुनी के बाद आप फिर संभल गए, सुधर गए?
3: अच्छा जी।
1: जी बिल्कुल, सुधारने का भी अलग अलग तरीका होता था हमारे बचपन में, है ना?
3: हाँ जी,
1: जी बहुत अच्छा लगा आपकी यादें सुनकर और धन्यवाद आपने हमारे साथ साझा की।
3: ठीक है, थैंक यू
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं राजकुमार बोल रहा हूँ,
0: राजकुमार जी कहाँ से
1: कांगड़ा
0: बात?
1: गुरकड़ी गुरकड़ी से।
0: जी राजकुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया जी, ठीक है।
0: जी कौन सी याद साझा कर रहे हैं हमारे साथ?
1: नहीं, हम छठी क्लास में पढ़ते थे, नई नई एडमिशन हुई थी मटौर स्कूल में,
0: जी
1: तो वहाँ आपको पता ही होगा कि गुरुद्वारे का मेला होता है वहाँ साथ में ही ना,
0: जी
1: तो हम 5-6 दोस्त थे, वहाँ चले गए मेले में। तो गोलगप्पे वाला था, उससे हमने कर ली डील कि तेरा पूरा ये खत्म करना, तो बता भाई कितने पैसे।
0: अच्छा
1: उसने बोला कि 200 रुपया दे देना,
0: अच्छा
1: लेकिन उस टाइम तो 200 रुपया बहुत ज्यादा होता था। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ बात ये 1980 तक की।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: तब तो बहुत पुरानी बात आप कर
1: तो
0: रहे हैं।
1: हाँ जी, गोलगप्पे वाले के हमने गोलगप्पे सारे खत्म कर दिए
0: अच्छा
1: अब, और पैसा ना मेरी जेब में ना मेरे दोस्तों की जेब में, किसी की भी जेब में नहीं है। मतलब 5-10 रुपए हो तो बड़ी भारी बात होती थी उस
0: जी
1: टाइम।
0: जी बिल्कुल
1: हाँ जी, तो पहले मैं किसका, फिर
0: अच्छा
1: दूसरा किसका, फिर तीसरा जी, ऐसे ऐसे करके 6 के 6 दोस्त भाग गए, और
0: अच्छा
1: गोलगप्पे वाला बेचारा हमारे पीछे भाग रहा हो।
0: ढूंढता रहा
1: हाँ जी, ढूंढता रहा, लेकिन मेले में कहाँ मिलना।
0: तो आज तक नहीं मिले आप उन्हें
1: वो ही तो है, अभी अभी मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है,
0: लेकिन
1: मैं
0: गोलगप्पे
1: देखता हूँ
0: वाला
1: यार
0: नहीं
1: वो
0: है
1: बंदा मिले तो मैं उसको 200 की जगह 1000 रुपया दे दूं। लेकिन
0: चलिए ये
1: अब
0: भी
1: दुख भी बड़ा होता है, लेकिन बचपन की बात है ना।
0: बिल्कुल। और देखिए
1: वैसे
0: कितनी हंसी, कितनी खुशी, मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर ले आती हैं आप जब सुना रहे हैं, तो कितनी हंसी के साथ, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल आपने हमें की, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर

0: ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई। जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: जी हाँ श्रोताओ, आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि और आज मैं हूँ आपके साथ रीना। जानते हैं हमारे अगले श्रोता की यादें। हेलो।
2: हेलो रीना जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव महतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
1: जी जी महेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी,
2: ना किसी किस्म का फिकर,
1: बिल्कुल राणा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
2: आओ पियो, खेलो, मस्ती करो।
1: जी
2: तो देखिए, हमारे बचपन में ऐसा होता था कि हमको, मैं अपनी बात सुनाता हूँ।
1: हाँ जी,
2: हमारी माता जी थी ना, जो कपास होते हैं ना।
1: हाँ जी,
2: कपास लेकर के उसको चरखे पे काटना, फिर उसको कपास के डोरे बना करके जुलाहे होते थे वो बुनने वाले।
1: हाँ जी,
2: कपड़ा बुना कर ले आना और खाली टेबल एक जगह भी ऐसी कपड़े पाछल गई है ना, उसके जो कमीज होती है, सिर्फ कमीज ही होती थी, नीचे से कुछ नहीं पहनना।
1: हाँ जी,
2: और ना ही पैरों में जूते होते थे।
1: हमने भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों से ऐसा सुना है।
2: हाँ जी
1: जी,
2: तो चले जाते थे खेलने के लिए, तो पाँव में कांटे भी चुभ जाते थे
1: जी।
2: तो सारा सारा दिन, सारा सारा रात खेलना, तो जब रात को दिन को कांटे चुभने, तो रात को माँ जी ने वो सुई लेनी और हमारे पैरों से कांटे निकालना। तो बहुत शरारते करते थे
1: जी,
2: डांट भी पड़ती थी, इतनी इतनी देर घूमते हो। और हमारे साथ लड़के और लड़कियां इकट्ठे खेलते थे
1: जी, बिल्कुल। साधन उन दिनों कम होते थे, लेकिन शरारतें खुशियां बहुत ज्यादा होती थी।
2: जी
1: तो बहुत
2: यही है ना, बचपन जो होता है बादशाही जीवन होता है।
1: जी बिल्कुल, बादशाह होता है हर बच्चा अपने बचपन में, है ना। जब हम बचपन में होते हैं तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से निकल जाए, हम बड़े हो जाए, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम उसी बचपन को मिस करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो दिन वापस नहीं आते।
1: जी जी बिल्कुल,
2: बीता हुआ समय और बैठा हुआ पानी
1: कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा राणा जी आपसे बात करके, धन्यवाद कॉल के लिए।
2: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई। जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: हेलो।
3: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
3: जी सविता बोल रही हूँ, रानीताल से।
1: जी जी सविता जी, कैसी हैं आप?
3: बढ़िया, और आप कैसे हो मैम? ठीक
1: जी
3: हो?
1: हाँ जी, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और क्या कुछ कहना चाहती हैं आज?
3: जी कहना तो ये चाहती हूँ कि असली मजा तो बचपन में था मैम।
1: हाँ जी, किस तरह का मजा था?
3: हाँ जी हाँ जी, आजकल तो लाइफ जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे मतलब बिजी हो जाता है ना,
1: जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं।
3: बहुत जिम्मेवारियां, असली मजा बचपन में, वैसे तो बहुत एंजॉय किया था मैम बचपन मैंने ना। तो हम जब थे, मेरी फ्रेंड थी और

0: बहन थी ना, और एक मेरा भाई था छोटा, 1 साल ही छोटा है मेरे से ना।
1: अच्छा।
0: तो हम स्कूल से अच्छे थे तो मतलब आम अमरूद का पेड़ होता था, वहाँ झूला वगैरह डालते थे, झूला झूलते थे, फिर खेलते थे, घर घर खेलते थे, मैं बहुत ही मजा आता था। वो आ जाती थी ना फ्रेंड मेरी हमारे घर में,
1: अच्छा
0: पास ही घर था उसका ना,
1: अच्छा
0: तो बड़ा मजा आता, हम चारों इकट्ठे खेलते थे, फिर खो खो वगैरह खेलनी, बहुत ही मजा किया मैम असली।
1: और कौन से गेम्स खेलते थे बचपन में? खो
0: बस
1: खो।
0: यही खो खो, हाँ जी खो खो खेलते थे, फिर ऐसे लुक्का छुपी वगैरह,
1: पकड़ पकड़ाई हो गई,
0: हाँ जी हाँ
1: गुल्ली
0: जी हाँ
1: डंडा
0: जी,
1: हो गया,
0: हाँ गुल्ली डंडा तो नहीं खेलते थे,
1: कंचे।
0: हाँ जी बाकी बाहर के गेम ज्यादा खेलते थे।
1: हाँ
0: और मेरे भाई थे ना, हम दो भाई थे, तो बचपन में ऐसे तकिए के साथ लड़ते थे,
1: जी।
0: मतलब एक दूसरे के ऊपर फेंकना, और मम्मा से गालियां भी पड़ती थी
1: ऐसा भी कहते थे मम्मा कि तुम लोग बस शरारते करते हो, काम धाम कुछ नहीं करते।
0: बस ये कि मतलब ज्यादा उम्र तो नहीं थी, एक बड़े भाई तो बड़े थे, पर वो भी हमारे साथ ही इकट्ठे हो जाते थे, जो मेरा छोटा भाई था, तो बड़ा मजा आता था तकिए के साथ खेलना, फिर गाड़ियां पड़ती थी मम्मा से, बस ऐसे ऐसे खेलते थे रहते।
1: जी, सविता जी, आपकी बचपन की यादें जानकर बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम जी।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार जी। नाम बताइए अपना।
1: जी। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ
0: जी अविनाश जी, कैसे हैं आप?
1: जी। बहुत बढ़िया है। और आज आपने बचपन की यादें फिर से ताज़ा कर दिया है
0: जी, कौन सी यादें ताज़ा हुई आपकी?
1: जी। बचपन में तो देखिए हम सब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखते थे। और जैसे ही मतलब कि हम सबके जब प्राइमरी स्कूल में थे तो 10 बजे स्कूल छुट्टी हो जाते थे। उसके बाद फिर हम घर लौटते लौटते 2-3 बज जाता था। तो और घर में आके ही मतलब कि बहुत पिटाई होता था। पर फिर उस दिन बोलते थे आप नहीं जाएंगे, आप नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर दूसरे दिन फिर वही वही गलती करते दोहराते रहते थे। यही सब यादें बहुत ही मतलब कि बना हुआ है हम सबके जीवन में। और आजकल के देखिए बच्चे क्या है कि आजकल के गार्जियन ही नहीं चाहते हैं कि वो बच्चे खेलकूद करें या फिर बाहर जाएं। तो मैं आग्रह करूंगा उन गार्जियनों के कि आप अपने बच्चों को देखिए, अगर बाहर नहीं भेजेंगे नहीं खेलेंगे तो उनका शारीरिक जो वृद्धि होती है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए
0: जी,
1: शारीरिक
0: मानसिक
1: विकास
0: और
1: के लिए
0: शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, है ना? ठीक से
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हमें कॉल की, अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी। धन्यवाद।

यशोदा, बहुत अच्छा लगा आपसे आपके बचपन की यादें जानकर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इसी खूबसूरत गीत के साथ अब मुझे यानी रीना को दें कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आपके घर तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जितेंद्र पाल सिंह।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम गीतों का कारवां का। कार्यक्रम की सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म दस्तूर के इस गीत के साथ, जिसे गाया है अभिजीत ने।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
2: कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म आ अब लौट चले से।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म और प्यार हो गया का ये गीत नुसरत फतेह अली खां, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

हाँ, मेरा दिल कह रहा है मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है मैं तेरे सुर्ख नरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है तेरी पाजेब की झंकार पे, तेरे बाहों के चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है तेरे उलझे गेसु सुहाने, इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रूप निहारा, इस महकती जमीन की सेज पे अपने अरमानों की चाहत लिख दूं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं शक्ति चंद व साथियों की आवाजों में गाए इस लोक भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जनभागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: लंबे इंतजार के बाद शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आज हो रहा है। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में इन पदों के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बीते 31 मई और 1 जून को जारी हुए जिला परिषद चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कुल 25 सदस्यों वाले जिला परिषद शिमला में बहुमत के लिए 13 सदस्यों का आंकड़ा छूने के लिए कांग्रेस और भाजपा को अब निर्दलियों का सहारा है। जिला परिषद चुनाव जीतकर आए 4 निर्दलीय आज होने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले हैं। जिस पार्टी को भी इनका समर्थन मिलेगा वह जीत हासिल कर लेगी। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने में पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी RCT महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में धर्मशाला में भी ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 30 बैचों में 838 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। अब इस वित्त वर्ष में 1000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

0: जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में जिला प्रशासन ने राशेल लिंगर मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर जरूरी अलर्ट जारी किया है। आगामी 14 से 25 सितंबर तक इस मार्ग पर नियंत्रित ब्लास्टिंग का काम किया जाएगा। यह ब्लास्टिंग दोपहर 2 से 3 बजे और शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच होगी। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत ब्लास्टिंग के समय मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस दौरान इस क्षेत्र से दूर रहें, पुलिस व प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला बिलासपुर में दिव्यांग लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कल 11 सितंबर और 17 सितंबर को प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के आयोजन के दृष्टिगत बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शशिधर शर्मा ने जिला मेडिकल डिसेबिलिटी बोर्ड का गठन किया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उन्होंने बताया कि यह शिविर कल 11 सितंबर और 17 सितंबर को 2 दिन आयोजित किया जाएगा। परीक्षण का स्थान क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर रहेगा। उन्होंने सभी संबंधित लाभार्थियों से सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि व समयानुसार शिविर में शामिल होने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिले के 402 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए निपुण मेले आयोजित किए जाएंगे। मेलों में गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय से जुड़ी गतिविधियां खेल खेल में करवाई जाएंगी। पंचकोशीय विकास के लिए 5 अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें अध्यापकों के साथ विद्यार्थियों की माताएं भी भाग लेंगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: जिले के 402 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए निपुण मेले आयोजित किए जाएंगे। 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों का अंक, गणित, पढ़ने और लिखने की दक्ष बनाने पर विशेष जोर रहेगा। शिक्षा विभाग ने गतिविधियों के आयोजन को लेकर सभी स्कूल प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कक्षा स्तर के अनुसार अलग अलग समय पर गतिविधियाँ करवाई जाएंगी। निपुण भारत मिशन के तहत गणित में जमा घटाव, अंग्रेजी में शब्द ज्ञान और हिंदी में सही उच्चारण और लिखावट से जुड़ी गतिविधियाँ होंगी। निपुण मेले के बाद विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता और बुनियादी ज्ञान का आकलन करने के लिए टेस्ट भी लिया जाएगा। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। यह दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भावनात्मक तनाव और कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को समय पर सहयोग, समझ और उचित देखभाल की जरूरत होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति की बात धैर्यपूर्वक और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना उसे मदद लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महक पंजाब दी। कार्यक्रम दे सारे श्रोतानों साडा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम दा आरंभ कर रहे ने अमृत मान दी आवाज विच गाए इस पंजाबी गीत दे नाल।

कार्यक्रम महक पंजाब दी तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते तां तुहानू सुना रहे ने एक पंजाबी गीत हंसराज हंस दी आवाज़ विच।

कार्यक्रम महक पंजाब दी तुसी सुन रहे ने आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र ते। कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत तुसी सुनोगे निर्मित खेरा दी आवाज़ विच।

आकाशवाणी दे धर्मशाला केंद्र तों तुसी सुन रहे हो कार्यक्रम महक पंजाब दी। कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत तुहानू सुनवा रहे ने सतिंदर सरताज दी आवाज़ विच।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महक पंजाब दी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आज़ादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आज़ादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया। हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 800-44-0559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।

0: घास थोड़ी सी घास ले ले।
1: पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
2: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।

0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
2: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
3: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
3: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
4: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और

0: टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
1: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढ़क ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।

0: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं, यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
1: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस

0: अलू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत,
3: फूल सी गुड़िया हमारी।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। हाजिर हैं फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजा और रंक फिल्म के इस गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म कालीचरण से लता मंगेशकर की आवाज में।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए, और कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सन्यासी से लता मंगेशकर और मुकेश की युगल स्वरों में।

श्रोताओ, आपने ट्यून के है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शोले का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मिंजरा।

सखियो जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना असा जो कुछ सिखांदा है ते जड़ा सीखी करी अगे बददा सचमुच सही सफलता पांदा है। तो स्टूडियोज़ की घड़ी से ठीक 12 बज के 30 मिनट हो गए हैं, कने असा भी हाजिर हो गए हैं अपनी सखियों कने ढेर सारी गल करने वास्ते। तो स्वागत सारी सखियों का कार्यक्रम सुनो सखी च। अज वीरवार है ते अज दे अंक च गल करदे असा मिंजरां दी। इस च अहां दी गलबात हुंदी अपनी पहाड़ी बोली च। ये तो साड़ी सखियां जिहड़ी इनसे जानदी ही हैं। तो ठीक एक बजे तक तो पैणा ने साड़ा साथ जड़ा से जरूर देना ते कार्यक्रम मिंजरा सुनने का जड़ा से पूरा आनंद लेना है। ते अगर इस वक्त असा दी सखियां रसोईए च दोपहर का खाना बनाने च व्यस्त हैं तो यह तो होर भी बड़ी खरी गल है, क्योंकि दिखा कार्यक्रम सुनते सुनते रोटी बनाने का पता भी नहीं चलना कि कल जड़ा से खाना बनी करी तैयार हो गया। तो इसका पहले कि ऐसा गल करना शुरू करन अज के विषय के बारे च, पहले चलते मनोरंजन पास कने सुनी लेंदे एक प्यारा दिया लोक गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो अंतराल का बाद एक बारी फिर स्वागत कार्यक्रम सुना दिया सारिया सखियां दा। तो पहले गल करी लैंदे अज दे दिने दे बारे च सखियो। अज 10 सितंबर है ते 10 सितंबर यानी अज दे दिने जो हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस दे रूप च मनाया जांदा है। अज दे दिने जो मनाने दा मुख्य उद्देश्य जड़ा है सखियो आम मनुआ जो मानसिक स्वास्थ्य दे प्रति जागरूक करना है, मुश्किल परिस्थितियां कन्ने जूझा करदे लोकां दे प्रति संवेदनशीलता पैदा करना है, ते कन्ने कन्ने समाज च सहयोग ते संवाद दी भावना यानी कि ऐसा खुली करी अपनी बीमारी दे बारे च गलबात करी सकन एक दूजे कन्ने, इस भावना जो जड़ा से मजबूत करना है। अज दे समय च असा सबना जो कई तरह दी चुनौतियां दा दिखा सामना जड़ा से करना पौंदा है ना, पढ़ाई दी गल हो, रोज़गार दी गल हो, पारिवारिक परिस्थितियां होन, आर्थिक समस्याएं होन यानी कि पैसे दी तंगी हो, सामाजिक दबाव हो है ना, या फिर कल्लापन हो, इन्हें सारिया चीज़ों का कई बार असा दे मने पर जड़ा से गहरा प्रभाव पौंदा। इदे वक्त च आलोचना या उपेक्षा दी जड़ी ऐसे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इंसान जो उपेक्षा दी या आलोचना दी जरूरत नहीं होंदी, बल्कि उस इंसान जो समझ सहारा ते अपनेपन दी जड़ी से जरूरत होंदी। समय पर सहायता ते गलबात करना ही आत्महत्या रोकने दा जरूरी जड़ा से सख्यो माध्यम है। अगर कोई मनु परेशान है या दुखी है, मतलब उदास लगे, अपने जीने जो लेकर निराशा सुनान कई लोग, तो उन्होंने सारे गल्ला जड़ी इनसे गंभीरता करने सुनना चाहिए, उसो हल्के पर जड़े से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कने उसो कल्ला छड़ने दे बजाए उसते कोई शिक्षक हैं या मित्र हैं, उन्होंने सहेलियां हैं, उसते अपने परिवार वाले हैं, उन्हें सबना जो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेने वास्ते जड़े से दसना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। असा सबना जो सखियो इस गल जो समझने की जरूरत है कि मानसिक स्वास्थ्य जड़ा से शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही जरूरी है। जी असा शरीर की बीमारी का इलाज करवाते, उं ही मानसिक बीमारी होने पर विशेषज्ञ का जरूर सलाह जड़े से लेना सही रहा, उसका इलाज करवाना जड़ा सह भी उतना ही जरूरी है। इस बारे च गल करने च जड़ी ऐसे डरने दी कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा जो कुछ ऐसी मतलब समस्या है, अपने आपे जो मानसिक रूप से सही रखना ही बेहतर है। विश्व आत्महत्या दिवस असा जो इस वास्ते जागरूक करदा कि कुसी मनु जो भी इकल्ले संघर्ष जड़ा से बिल्कुल नहीं करना देना है, अपने परिवार वालियां जो सहेलियां जो अड़ोसी पड़ोसी जो इदे मनुआ कन्ने गलबात जड़ी ऐसे जरूर करते रहना चाहिए, उन्हां दी गल्लां जिहड़ियां से ध्यान कन्ने सुनना चाहिए, ताकि कुसी चो भी आत्महत्या करने दी सोच जिहड़ी उसदे मन च कदी ना आए। असा सबना जो एक इदिया समाज बनाना चाहिए सकियो जिथों हर मनु

अपनी परेशानी जड़ी से खुली करी साझा करी सकन ते जरूरत पौने पर बिना भेदभाव का उसो जड़ी से हर तरीके दी मदद मिली सके तक गल्ला जड़ी इंसान सा होर भी अपनी सखियां कने करनी है ना आगे होर भी विषय पर गलबात तो कने असा इस तरीके कने करते रहना है पर फिर सुनना एक कार्यक्रम बिच प्यारा दिया लोकगीत तो चलते हैं लोकगीत पास से।

एक बारी फिर स्वागत साड़ियाँ श्रोता सखियां का कार्यक्रम मिंजरां च। भैनों अगर अस अपने हिमाचल की गल करन ता असा दा हिमाचल अपनी प्राकृतिक सुंदरता उचे उचे पहाड़ कल कल कर दी नदियाँ बर्फे कन्ने ढकी हुई चोटियाँ ते शांत वातावरण के कन्ने कन्ने अपनी समृद्ध हिमाचली संस्कृति वास्ते भी प्रसिद्ध है। इत्थों के माणुआं दा

लोक गीत का हटिकरी हुण चलदे रसोईए पासे ते बनांदे हन खट्टा मिठा कद्दू। साड़ी पैणा दी रोटियां दिने तां बनी गई होनी अज दी, पर कल अगर कद्दू बनाना हो तो बनाई सकदे। जी हाँ, तो कद्दू बनाने वास्ते असल चाहिदा पक्या कद्दू। पक्या कद्दू दे छिलके जड़े हैं से निकालने थोड़े मुश्किल होंदे, पर इन्हां दे छिलके छिली करी खरे कन्ने साफ पानी कन्ने जड़े से कद्दू जो धोई लैना। धोई करी चौरस टुकड़ियां च कट्टी लैना। फिर एक कढ़ाई च तेल पाना सरयां दा। जालू तेल पकी जाएगा उस च जीरा, थोड़ी देर मिथरियां, एक चुटकी हींग दी पानी,

हल्का दिया जड़ा से ये पकाई लैनी सारी चीज़ा। जलू तड़का पकी जाएगा कट्टिया कद्दू पाई देना ते 2-3 मिनट तक फुल गैस पर पलटे कन्ने छेड़ा मारदे मारदे पकाई लैना। हल्दी लून लाल मिर्च अपने हिसाबे कन्ने पाई देनी, थोड़ा जिहा पानी पाना ते ढक्कन लगाई करी कद्दू पकना देना। बिच बिच ढक्कन हटाई करी छेड़ा मारते रहना। जालू कद्दू जड़े से पकी जाएगा उस जितनी खटाई चाहिदी हो उस हिसाबे कन्ने अमचूर पाई देना। थोड़ा जिहा पकाई करी गुड़ या चीनी जड़ी असें पाई देनी, थोड़ा जिहा जड़ा गुड़ पाना तो गुड़ पानी, चीनी पानी हो तो चीनी पाई देनी। जितना भी खट्टे मिठे का स्वाद तुहाने रखना उस कद्दू पर उस हिसाबे कन्ने खटाई ते मिठा जड़ा से पाई देना। ढक्कन लगाई करी 5-7 मिनट हल्की आंच पर कद्दू जड़े से पकना देना। फिर छेड़ा मारी करी खरे कन्ने मिलाई लेना। बस खट्टा मिठा कद्दू जड़े से बनी करी तैयार है। ऊपर का कसूरी मेथी ते हरा धनिया कट्टी करी पाई देना। तो बस खट्टा मिठा कद्दू बनाने वास्ते जड़ी से ज़्यादा देर नहीं लगती, तो जरूर कोशिश करनी अपनी रसोई से खट्टा मिठा कद्दू बनाने की। तो खट्टा मिठा कद्दू तो अहां दा बनी गया। हुण चलदे लोक गीत पासे कन्ने सुन लैंदे इक होर चटपटा दिया लोक गीत।

लोक गीत कन्ने अज दे कार्यक्रम विच बस इतना ही। कार्यक्रम जो तुसा सखे तक पुजाने वास्ते तकनीकी सहयोग दित्या विकास पठानिया ने, ते इस कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अपनी सखी माया जो कार्यक्रम जो संपन्न करने दी अनुमति दिया। प्यारी सखियो, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 1 बजने को हैं अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिनोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: Women, we open their bank accounts.
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: Our members of 9 million self-help groups.
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की

ये स्वर थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम था आपकी कसम। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म आपकी कसम में इस गीत में किस्सा है कि किशोर कुमार जी हंसते हुए कहते हैं बजाओ बेटा जम के बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना तो बहुत अच्छा है लेकिन बिना मतलब की हंसी अच्छी नहीं होती। हाँ, दूसरे का मजाक बनाकर हंसना ठीक नहीं होता लेकिन कार्यक्रम में हंसना बहुत अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रसंग बहुत ही आकर्षक और रोचक है, कहीं गीत याद आ रहे हैं और हो सकता है ये गीत आप इस कार्यक्रम में शामिल भी करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चिर हरित मुस्कान बिखेरने वाली मंदाकिनी जिनके व्यक्तित्व के अनुरूप विषय गान और मुस्कान भरी सुरीला सफर लेकर आ रही हैं, अत स्वागतम। वही एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी खनकती आवाज प्यारी बातें सफर को बहुत सुहाना और मत भरे गीतों से बहुत ही रोमांचक बना देता है। आपका स्वागत है। गीतों में कुछ गुनगुना रहे हैं, आपने कुछ गीतों का जिक्र किया है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ पल हंसने के लिए मिल जाए तो समझना चाहिए कि शरीर को फ्री का टॉनिक मिल गया है, यानी कि हम विविध भारती के श्रोताओं को सुरीला सफर प्रोग्राम में आज 1 से लेकर 2 बजे तक फ्री में हंसने का टॉनिक देने वाली हैं उद्घोषिका।

एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत ही खूबसूरत है। आज के सुरीले सफर में गीत की शुरुआत में, बीच में या अंत में आ रही हंसी की बात तो होने जा ही रही है, वो तो होनी ही थी। लेकिन इसके अलावा एक और हंसी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी छोटी बहना कमेंट पढ़ते वक्त या बीच में या अंत में कभी कभी मंद मंद खिलखिलाहट के साथ जब हंस देती है तब लगता है कि हंसी से भरी फुलवारी हो, ऐसी प्यारी प्यारी न्यारी लगती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ में बज रहा है हमारा रेडियो भी, हंस रहा है। अच्छा एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती का सुरीला सफर है, सुहाना होता है शुरू 1 बजे रोजाना, यहाँ कब किसकी कमेंट पढ़ी जाए ये किसने जाना। अरे वाह, आपने तो किशोर कुमार का गाना ही लिख दिया है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी भावनाओं, परिस्थितियों और शारीरिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। हंसी के विविध प्रकार हो सकते हैं, खिलखिलाना, ठहाके मारना, दबे हुए हंसना, मासूम हंसना, उपहास भरी हंसी, घबराहट वाली हंसी और सबसे प्यारी खुशी या आनंद वाली हंसी। सुरों और शब्दों के साथ एक छोटी सी हंसी गीत को चार चांद लगा देती है और सुरीला सफर में आपकी आत्मीयता भरी हंसी दिल में घर बना लेती है। आज की अनुपम सुंदर थीम पर इतने सारे गीत याद आ रहे हैं कि 2 या 3 सुरीले सफर भी कम पड़ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने लिख भी दिए हैं कुछ गीत, हो सकता है कि ये गीत इस कार्यक्रम में शामिल भी हो। चलिए हंसते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत सुनते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं ये, अनुराधा पौडवाल और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज है। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: बापरी
1: हमारे तुम्हारे मुन्ना कुट्टी टिंकू मिली शिंशना की बबला पू खेल खेल में शोर
0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा?
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम
1: सतदम शिवम सुंदरम

0: रफ मास्टर।
1: ये रास्ते हैं प्यार के, चलते चलते मेरे हम सफर, हम सफर। दिल तेरा दीवाना दीवाना मस्ताना, चलिया अनजाना
0: पगला कहीं का।

0: हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कभी कभी गानों में एक मासूम सी नटखटपन घुली होती है और जब किसी धुन के बीच में अचानक से कोई खिलखिलाहट या कोई प्यारी सी गुनगुनाहट सुनाई दे जाती है तो लगता है जैसे किसी ने सुरों के आंगन में आकर रंग बिखेर दिए हों। कहीं उस हंसी में कोई मीठी सी शिकायत होती है, कहीं दोस्तों की मस्ती, कहीं चाहत का इकरार और कहीं एक ऐसी बेपरवाह हंसी जो गीत को सिर्फ एक रचना नहीं बल्कि जिंदगी का जीता जागता लम्हा बना देती है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीत केवल सुरों और शब्दों का मेल नहीं होते, वे भावनाओं की ऐसी दुनिया है जहां कभी कभी एक छोटी सी हंसी पूरा गीत महका देती है। खासकर जब भी किसी गीत के बीच नायिका की सहज खिलखिलाहट अचानक सुनाई देती है तो मन जैसे उसी पल ठहर जाता है। वो हंसी कभी प्रेम की शरारत होती है, कभी छेड़छाड़, कभी नोकझोंक, कभी खुशी की निश्चल अभिव्यक्ति। सुरों के बीच घुली वो हंसी कानों में उतर कर सीधे दिल को छूती है और चेहरे पर अनायास मुस्कान ले आती है। गीत फिर केवल सुना नहीं जाता बल्कि महसूस होने लगता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों की सुर लहरी का ऐसा जादू है कि पलकें नींद की दस्तक पर झपकती हैं और मगर मन को पंख और कल्पना को परवाज देते ये गीत की अनुगूंज पहरों पहर बनी रहती है। गायकों के दिव्य स्वर से रचा बसा कोई भी गीत रात को सोए कंदीलों तक को जगा देती है। ये है गीतों की ताकत। स्वर और लय अनादि है। हर गीत की मिठास जीवन की विविधता में प्राण फूंक देती है। गीतों के शब्द जितनी गहराई से मन को छूते हैं वो गीत उतना ही अक्षत और कालजयी हो जाता है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वाकई इन गीतों के बीच में हंसने के क्या मायने हैं, ऐसा वही महसूस करता है जो इन गानों से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो। अच्छा चलिए, दो सीधे साधे सवाल हमारी तरफ से आपके लिए कि आपको ऐसा कौन सा गीत पसंद है जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को आपकी दृष्टि में ज्यादा बढ़ा दिया है। कोई एक गीत का जिक्र आपको करना है फिल्म का नाम गाने के बोल के साथ। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको ऐसी कोई घटना याद आती है जहां पर आप अपने परिवार वालों से या अपने दोस्तों से बात करते करते अचानक जोर जोर से हंसने लगे या खिलखिलाने लगे, या आपके दोस्त या आपकी फ्रेंड जहां कहीं भी आप खड़े थे अचानक एक खिलखिलाती हंसी आपके बीच आई और आप सभी लोग देखने लगे चौंक कर कि ये क्या हुआ। ऐसा कोई लम्हा आपको याद है? कम से कम शब्दों में बतानी है आपको ये घटना, छोटी से छोटी शब्दों में, यूं कह सकते हैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की बातों को शामिल कर सकें। और आइए बढ़ते हैं शंकर जयकिशन के संगीत की ओर। हसरत जयपुरी के बोल हैं, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अंदाज। ये गीत तो हमें हंसने का मौका कई बार देता है ना?
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर

तो देखा आपने कितना खूबसूरत गीत था जो हमें हंसा देता है, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस वक्त मुस्कुरा तो रहे होंगे कम से कम, और कुछ लोग हंस भी रहे होंगे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इन गीतों में हंसी है, वाह वाह, आज तो हंसी की नाव पर हम सब मंदाकिनी जी के साथ गीतों की नदी में सैर करने वाले हैं। अच्छा, आप नाव की सैर कर रहे हैं मेरे साथ? चलिए, आप जिसमें खुश हैं हम तो उसी में खुश हैं। बस शर्त यह है कि हमें हंसते हंसाते हुए आज का ये सफ़र तय करना है, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछा कि हमें कौन सा गीत पसंद है, ऐसा कोई फिल्मी गीत जिसमें गायक या गायिका की हंसी ने उस गीत की खूबसूरती और शरारत को बढ़ा दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि जवानी जाने मन नमक हलाल का गीत, जो कि आशा भोसले की आवाज़ में, ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म का गाना है कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा, और सारे शहर में आपसा कोई नहीं, ये गाना फिल्म बैराग का हमें बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी गीतों में हंसी तो हमें खुश कर ही देती है, लेकिन आपकी मधुर आवाज में भी हमें हंसी सुनाई देती है जो मन को प्रसन्न कर देती है। क्या बात है, आपको सुनाई देती है मेरी हंसी? मैं एक श्रोता लिखते हैं कि दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, इस गाने में बड़ी अलग अलग हंसी है, खांसी वाली हंसी भी है। मुझे सबसे बड़ी अच्छी हंसी दिनेश हिंगू जी की लगती है उनकी फिल्मों में। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब गीतों में किसी गायिका और गायक की गीतों में शरारतें होती है तो गीत में खूबसूरती आ जाती है। खासतौर से हमें तो गायिका की शरारत अच्छी लगती है। हमारे फिल्मी गीतों में इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो शरारतों से और खूबसूरत बन गए हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल, अच्छा तो हम चलते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत है जहां पर गायिका हंसती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसना और खिलखिलाना सच में जिंदगी के सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफे हैं। जब हमारा मन खुश होता है तो दिल झूम उठता है और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हंसने से हमारे शरीर और दिमाग को बहुत सारे फायदे मिलते हैं।

खिलखिलाकर हंसने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, रक्त संचार बेहतर होता है जिससे दिल की बीमारियां दूर होती हैं। हंसमुख बने रहने से इंसान हर मुश्किल परिस्थिति में उम्मीद नहीं खोता। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं लोग उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं और उनके सामाजिक रिश्ते मजबूत बनते हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, हंसने और मुस्कुराने का कोई भी मौका हाथ से हमें नहीं जाने देना चाहिए। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि थोड़ी सी मुस्कुराहट उधार दे दे मुझे जिंदगी, कुछ अपने आ रहे हैं मिलने की रस्म अदा करनी है। आजकल की भागदौड़ और तनावपूर्ण जिंदगी में होठों के पास आए हंसी क्या मजाल है, फिर भी हमें हर हाल में रस्मी तौर पर मुस्कुराना पड़ता है। बच्चे की तरह उन्मुक्त और खिलखिलाती हंसी न सही, फिर भी थोड़ा बहुत तो हंसा ही जा सकता है। आजकल घरों में लोग सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी के लिए हंसती हुई मूर्ति या लाफिंग बुद्धा रखते हैं। क्या अच्छा हो अगर घर के सभी सदस्य थोड़ी देर साथ बैठकर हंस बोल लें। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि मुस्कुराइए, आप विविध भारती के साथ हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर टैगलाइन दी है आपने कि मुस्कुराइए हंसिए आप विविध भारती के साथ हैं। हमारी श्रोता लिखते हैं कि हंसी भी कितनी प्यारी चीज है, न कोई भाषा चाहिए न कोई वजह, बस दिल में निकली एक छोटी सी हंसी सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। कुछ हंसियां पल भर की होती हैं लेकिन उनकी मिठास बहुत देर तक दिल में रहती है। शायद इसलिए कहते हैं कि खुशियां बांटने के लिए शब्द नहीं एक सच्ची हंसी ही काफी होती है। तो हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं कि हंसना बहुत मुश्किल काम है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हंसना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। क्योंकि हम तनाव अपने सिर पर ओढ़ लेते हैं, सारी परेशानियां, सारे तनाव, सारी मुश्किलात ओढ़े चलते रहते हैं और हंसना भूल जाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि जिंदगी में अच्छे दिन भी हैं, बुरे दिन भी हैं, रात भी है तो सुबह भी है। हम अपनी जिंदगियों को किन अर्थों में लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। आप हजार दुखों के साथ भी मुस्कुराकर जी सकते हैं, हंसकर जीवन को अपना कहते हैं ना कि बहुत ही सहज और सरल बना सकते हैं। देखिए इस गाने में दो सखियां किस तरह से एक दूसरे को छेड़कर ही हंस ले रही हैं। और ये हमारी जिंदगी में भी होता है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, किसी अपने के साथ मिलते हैं, तो हंसी मजाक करना पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं शैलेंद्र के बोल, SD बर्मन का संगीत, गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम है इंसान जाग उठा। आपको भी बताना है कि आप भी कभी हंसे हैं ऐसे किसी अपने के साथ।

ये आवाजें गीता दत्त और आशा भोसले की थी। फिल्म का नाम था इंसान जाग उठा। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत तरीके से हंसती हैं दोनों नायिकाएं, है ना। अच्छा, कभी आप हंसते हैं इस तरह से? बताइएगा हमें कि आप किस तरह से हंसना पसंद करते हैं या हंसना पसंद ही नहीं करते। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही मज़ेदार गीत चल रहे हैं, हम हंस रहे हैं और हमारे घर के जो पेंटर हैं, कलर कर रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। सच में आपकी आवाज़ में भी हंसी छलक रही है। अच्छा, आपके घर में काम चल रहा है और वो पेंटर भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बोल तो याद रह जाते हैं मगर उन बोलों के बीच गूंजी हंसी अक्सर पूरी कहानी कह जाती है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे आपकी मधुर आवाज़ में हंसी की खनक मौजूद रहती है जिसे हम अक्सर महसूस करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी हमारी तारीफ करने के लिए। लेकिन यहाँ कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि आपको कौन से गाने पसंद हैं, जिनकी तारीफ में आप कुछ लिखिए या उस हंसी के बारे में लिखिए जो आपको बेहद पसंद है। जैसे कि एक श्रोता ने लिखा था कि उन्हें दिनेश हिंगू की हंसी बहुत पसंद आती है। अच्छा, आपको भी कोई ऐसी हंसी पसंद आती होगी किसी नायक या नायिका की, अपने आस पड़ोस में या अपने घर परिवार में या किसी बच्चे की, है ना, खिलखिलाती कोई हंसी जो आपको आकर्षित करती है, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, ये इस गीत के अंत में लता जी की खिलखिलाती हुई पावन और जादुई हंसी है जो दुनिया की अनमोल मोती है। एक महज एक हंसी नहीं, स्वर साम्राज्ञी के कंठ से टपका पावन नूर है, दिल थम जाए ऐसा सुरूर है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, विश्व में अलग अलग लैंग्वेज है लेकिन हंसी की एक ही भाषा है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप भी तो बहुत प्यारे हंसी वाले गीत सुनवा रही हैं अपनी सुंदर हंसी के साथ, क्या बात है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन मूवी का गीत, एक चतुर नार वाला गीत हमें बेहद अच्छा लगता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा के द्वारा गाए गए कुछ गीत जो हमें बहुत पसंद आते हैं, चतुर नार, बाबू समझो इशारे, आके सीधी गिरी दिल पे। अरे वाह, इसमें तो किशोरदा ने दो आवाजें निकाली हैं, है ना, ये गीत तो बहुत ही सुंदर है। एक श्रोता लिखते हैं कि सत्या फिल्म का गीत तू मेरे साथ है, तू मेरे पास भी है, गुलजार साहब के बोल, लता जी की आवाज, हरिहरन की आवाज। और इसी फिल्म का एक अन्य गीत है, सपने में मिलती है कुड़ी मेरी, इस गीत में भी हंसी सुनने को मिलती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बेताब का गीत जब हम जमा होंगे, ये हमें बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म चांदनी फिल्म का गाना, टाइटल गीत जो कि चांदनी ओ मेरी चांदनी, और इसमें आपको यकीनन श्रीदेवी की जो हंसी है वो बहुत लुभाती है ना, क्योंकि इतनी खूबसूरती के साथ वो उस गीत में हंसती हैं और इस गीत को इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाया है कि हम सुनना बार बार पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों में हंसी खोजना, वाह क्या बात है उद्घोषिका जी, आपका सादर नमस्कार, बड़ा रोचक विषय है आज का, और सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती सुरीला सफर पेज खोलने से पहले मैं अनुमान लगा रही थी कि आज आप ही आएंगी और ये देखिए आप आ भी गई। आपकी खनकदार आवाज़ का इंतजार रहता है, आज तो अलग ही प्रकार का आनंद रहेगा गाना सुनने में। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत में हंसी आना ऐसा है जैसे किसी बेहद संजीदा पेंटिंग के एक कोने में किसी बच्चे ने चुपके से रंग बिखेर दिया हो, क्या बात है। ये हमें याद दिलाती है कि माइक के उस पार कोई मशीन नहीं बल्कि धड़कता हुआ इंसान खड़ा था जो गाते गाते उस लम्हे में खो गया। ये हंसी गीतों को अमर बनाती है क्योंकि सुर भले ही कानों को छूकर लौट जाएं लेकिन वो बेसाख्ता खिलखिलाहट सीधे दिल में उतर आती है, क्या बात है। हमारे श्रोता भी कितने शायराना

अंदाज में अपनी बात लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सभी आपके साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी खुशी जाहिर करेंगे। हंसना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। सबसे ज्यादा फरमाइशी गीत भंवरे ने खिलाए फूली गाना आपको बेहद पसंद है। अच्छा, यहाँ लता जी जब हंसती हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलने वाले हैं जिसमें हंसी मुस्कुराहट सभी शामिल होने वाला है। मुझे लगता है एक गाना इसमें मुझे याद आ रहा है कि जय जय शिवशंकर, जिसमें बहुत ही हंसाया जाता है, और एक बात कहो गर मानू तुम, ये गाना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए आपने इस गीत को पसंद किया और हमारा अगला गाना यही है हमारी लिस्ट में। आर डी बर्मन का संगीत है, गुलजार साहब के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम गोलमाल। बहुत हंसना हंसाना लता जी का इसमें भाता है ना। आप भी हंसिएगा ना इस गीत के साथ।

जी तो बताइए, गीत सुनने के बाद आप भी मुस्कुराए कि नहीं? और कभी कभी पता है ऐसा भी होता है ना कि हम खुद से ही बात करते हैं अकेले में और फिर मुस्कुराने लगते हैं या हंसने भी लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा बहुत बार जब आप अकेले बैठे होते हैं या

आराम कर रहे होते हैं या सोने जा रहे होते हैं तो कोई बात याद आ जाती है अपने दोस्तों की या अपने परिवार वालों की या किसी खास की और हम अकेले में हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। आपके साथ कभी ऐसा होता है बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का प्रसिद्ध गाना है मेरा नाम है शबनम और प्यार से लोग मुझे शब्बू कहते हैं। ये गाना जो आशा भोंसले की चुलबुली और नटखट हंसी गाने की शुरुआत और अलग अलग अंतरा के बीच पर जो नेचुरली पिरोई गई है वो बहुत अच्छा लगता है और जिसे महान गायिका आशा भोंसले ने अपनी बेहतरीन आवाज़ में गाया है। बिल्कुल ये गाना इतना मुश्किल है और उसमें हंसना तो और भी ज़्यादा मुश्किल, लेकिन हाँ इसे आपने समझा सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे खूबसूरत और प्यारी छोटे बच्चों की हंसी होती है, कहते भी हैं कि दूर है मंदिर तो क्या हुआ, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। क्या बात है। वे एक श्रोता लिखते हैं कि जब भी मेरी धर्म पत्नी और मैं किसी भी होटल की या बिल्डिंग की लिफ्ट में अकेले होते हैं तो फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत मेरे जीवन साथी ज़रूर सुनते हैं, सुनाता हूँ। धर्म पत्नी हंस देती है और कहती है झूठा कहीं का और मैं भी हंस देता हूँ। बिल्कुल जीवन में ये रोमांस होना बहुत ज़रूरी है। जब आप जीवन में कहीं ना कहीं रोमांचित होते हैं, रोमांस रखते हैं तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को दिलीप कुमार और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया गाना सारे शहर में आपसा कोई नहीं, आशा जी की हंसी बहुत ही प्यारी हंसती हैं और हम भी हंसते हैं और क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, इसमें आशा जी की जो हंसी है वो बाकमाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिल्म लव स्टोरी का जो ये गाना है बहुत ही चुलबुली और शरारत भरी हंसी है उसमें आशा जी की। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत मज़ेदार है और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे तो काजोल की हंसी और मुस्कुराना, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे मेरी 8 महीने की बेटी की हंसी सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किशोरदा का गाना है चिल चिला के कजरी सुना, ये गीत सुनकर हंसी आई जाती है और इसके बोल भी बहुत शानदार हैं। वहीं एक श्रोता को हेमा मालिनी जी की हंसी देखने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो हंसना बहुत पसंद है और सबको हंसाने में बहुत मज़ा आता है। स्कूल के दिनों में सब मुझे हंसमुख अजमेरा नाम से संबोधित करते थे क्योंकि सभी को मैं अक्सर हंसाया करती थी। बहुत अच्छी बात, जब भी तो कहते हैं कि हंसो और हंसाओ। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे इस सफर में। शंकर जयकिशन का संगीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं ये, आशा भोंसले मुबारक बेगम और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है आरजू। हाँ, इस गाने के आरंभ में ही हंसी आपको सुनाई देती है ना।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम बहुत ही खूबसूरत है। गीतों के बीच गायक या गायिका की वो कुदरती और बेसाख्ता हंसी गाने में एक अलग ही रूह और ताजगी भर देती है। आज के इस खास शो में गीतों के बीच खिलखिलाती हंसी और छेड़छाड़ वाले कई सदाबहार नगमे आज आपके साथ हम सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वार्तालाप वाले गीत तो बहुत अरे सुने हैं, लेकिन उनमें खिलखिलाट वाले गीतों को ढूंढकर उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयोग ये अनूठा है आपका, और इस दृष्टिकोण से ही ये इबारत आपकी प्रशंसनीय है। और आगे आपने डैश डैश डैश और क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, और क्या। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पतिदेव का सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, उनके पांच में से चार बातें तो चुटीली ही होती हैं, अक्सर अकेले में उनकी बातें याद करके मैं हंस पड़ती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला की मुस्कुराहट और हंसी बहुत खूबसूरत और कातिलाना लगती है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मुस्कुराती हूँ मैं कई बार, और जब नींद से जाग जाऊँ तो याद आता है कि अरे ये तो सपना था, बस इसी बात पर हंसी आ जाती है। वहीं एक श्रोता को आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया वाला गाना बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल अपनी बेटी के घर हूँ, मेरी दो छोटी सी नातिने हैं, दोनों आपस में खूब खेलती हैं, खूब खिलखिलाकर हंसती हैं और मुझे बहुत मजा आता है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के साथ खिलखिलाना तो बहुत ही अद्भुत एहसास है। ये और आइए अब सुनते हैं आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार के। फिल्म का नाम है बुलेट। इसमें देखिएगा कहाँ हंस रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले।

0: अच्छा ये सब छोड़ो, पर इतना तो सोचो कि मैं भी चुप और तुम भी चुप, तो किसने मचाया ये शोर? कौन है? कौन कौन है भाई?
1: अरे ये तो पर्दा है।
0: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ,

0: धड़कन को छेड़ा ना दिल से ही खेले, काश आज रात हम होते अकेले।
1: होते जो अकेले तो कयामत हो जाती, बाद में जो होता पर मोहब्बत हो जाती।
0: कैसी तुम्हें बड़ा बेशरम है, देखो फिर आया हमें कर रहा है, ये बोर कौन है?
2: अरे कौन है रे, कौन है रे?
1: ये तो मैं हूँ भाई। चोरी चोरी छुपके।

0: ऊपर है।
1: ऊपर है?
0: नीचे है।
1: कहाँ है?
0: यहाँ है।
1: अरे यहाँ तो कोई भी
0: नहीं है।
2: जी तो देखा आपने, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन सामने हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लगातार इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं और हमें लिख भी रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गीत के बीच में सुनाई देने वाली ये हंसी जैसे किसी बंद किताब के पन्नों के बीच अचानक कोई मुस्कुराता हुआ फूल मिल जाए वैसी होती है। ये हंसी गीत का हिस्सा होकर भी गीत से कहीं ज्यादा कह जाती है। कभी प्रेम की शरारत, कभी मिलन की खुशी, तो कभी उस पल की अनायास खिली मासूमियत। सुर कानों तक पहुंचते हैं मगर ऐसी हंसी सीधे दिल में उतर आती है और बरसों बाद भी वही चेहरे, वही दृश्य और वही खूबसूरत पल याद आ जाते हैं। सुरों के इस सफर में हंसी की छोटी सी झनकार जैसे बीते हुए पलों की खिड़की खोल देती है और तब महसूस होता है कि कुछ गीत सिर्फ आवाजों से नहीं, मुस्कुराहटों से, खिलखिलाहटों से और भी यादगार बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो यादगार रहेगा आज का ये सफर। और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें हमें किसी एक उपलब्धि पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर बात से सीखते हुए आगे बढ़ते हुए और खुद को बेहतर बनाते हुए जीवन का सफर तय करना है। जो व्यक्ति रुक जाता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है, जबकि जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। जीवन में निरंतरता ही सफलता, आत्मविश्वास और विकास की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों को लगातार दोहराने से हासिल होता है। निरंतर और नियमित मेहनत से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं।

उसमें लगातार प्रयास करने से हमारा अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है, समय का सही उपयोग होता है। नियमित काम करने से टालमटोल की आदत भी कम हो जाती है। हम चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति हमें मिलती रहती है। हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और इसमें निखार भी आता है। निरंतर सीखने और सुधार करने से हम मानसिक, सामाजिक और व्यवसायिक रूप से भी आगे बढ़ पाते हैं।

निरंतरता वो शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। यदि हम प्रतिदिन ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहें तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। प्रकृति भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नदियाँ कभी बहना नहीं

छोड़ती। सूर्य हर रोज उदित होता है और ऋतुएं निरंतर बदलती रहती हैं। कभी सोचा है यदि कोई नदी बहना छोड़ दे तो उसका पानी ठहर कर दूषित हो जाएगा? बिल्कुल इसी तरह यदि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे तो उसके ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास का विकास रुक जाएगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, असफलताएं और निराशाएं हमेशा ही नया कुछ सिखा कर जाती हैं, भविष्य में बेहतर बनने का अवसर भी देती हैं। इसीलिए इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता है वही वास्तव में प्रगति कर पाता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की।

0: आई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 160,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
1: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितम्बर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ और चुनावी साक्षरता क्लब ईएलसी के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
2: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्मभूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13,600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित

0: होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदा सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

गीत यानी इस कार्यक्रम का पहला गीत पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध की आवाज सुनिए। गायिका हैं लता मंगेशकर और फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था बेदर्द जमाना क्या जाने। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ, फिल्म का नाम जाली नोट। शब्दकार राजा मेहदी अली खान और संगीतकार ओपी नैयर।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, शब्द मजरू सुल्तानपुरी के हैं और तर्ज सचिन देव बर्मन की है।
3: दिल वाले हुए, अब तेरी गली तक आ पहुंचे।

0: तक आप।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फिल्म का नाम एक फूल चार कांटे। बोल हसरत जयपुरी के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है बरसात की रात, गीत साहिर लुधियानवी का है और धुन रोशन की।

0: शायद तुम्हें।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है मुगले आजम।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुगल-ए-आज़म। गीतकार शकील बदायूनी थे और संगीतकार थे नौशाद साहब। गीतकार शकील बदायूनी थे। और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बिंदिया।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था बिंदिया। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आज हुए चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा समर्थित उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह सिसोदिया को अध्यक्ष और भरत सिंह कलांटा को उपाध्यक्ष चुना गया। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुए चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के भूपेंद्र सिंह सिसोदिया को 13 वोट मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुरेंद्र रेखटा को 10 वोट हासिल हुए। अध्यक्ष पद के लिए 2 वोट अमान्य घोषित किए गए। उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के भरत सिंह कलांटा को 14 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस की मीनाक्षी को 10 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर 1 वोट अमान्य घोषित किया गया। शिमला जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने इसे प्रदेश सरकार के खिलाफ जनादेश करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगभग 25 वर्षों बाद शिमला जिला परिषद पर कब्जा किया है।
1: विदाई का दिन है, हमारे नए जिला परिषद चेयरमैन जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है शिमला में, जिस शिमला में बीजेपी का कई सालों बाद ये जो है किला फतेह हुआ और एक कील गाड़ी और सुशासन के ऊपर ये आज पता लग गया है। सुजी का शासन जो है जिला शिमला में भी रेक हो गया, तो अब भारतीय जनता पार्टी की जीत है और आने वाले इलेक्शन का एक शुरुआत है।
0: नवनियुक्त जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने चुनाव के बाद कहा कि वे जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएंगे और उनकी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
2: ये चुनाव के नतीजे पहले भी यही रहने थे और इसको कांग्रेस टालती रही। कांग्रेस के खिलाफ इतना रोष पहले से था, अब बहुत ज्यादा रोष था। और ये जिला परिषद का जो हमने चेयरमैन बनाया, मैं उसके लिए अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और सभी जिला परिषद मेंबर का और सारे नेतागण का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
0: इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला जिला परिषद में भाजपा की जीत को लोकतंत्र की जीत और जनादेश को हत्याने की कोशिश करने वालों की हार बताया है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सरकार ने जनादेश को प्रभावित करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन उनके सभी प्रयास नाकाम साबित हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस हार से सबक लें और लोकतंत्र, संविधान व जनादेश का सम्मान करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता का उपयोग कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के बजाय जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र की सच्ची मर्यादा है और मुख्यमंत्री को उनका पालन करना चाहिए। प्रदेश के संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त जितेंद्र सांजटा ने कहा है कि प्रदेश में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा निगरानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आम जनता को खाद्य मिलावट के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा 5 मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन संचालित की जा रही है। ये मोबाइल वैन शिमला, सोलन, कुल्लू, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में कार्यरत हैं। इन वैन के माध्यम से आम जनता, खाद्य कारोबार संचालकों और अन्य हितधारकों को निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कुंभ अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट में 29वें राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी व औद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति एचएस बवेजा ने किया। बवेजा ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय मशरूम मेला देशभर के मशरूम उत्पादकों के लिए नवीनतम जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि देश की युवा आबादी को मशरूम उत्पादन से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयासरत हैं, ताकि युवा पीढ़ी इस लाभकारी व्यवसाय से जुड़कर देश की आर्थिकी में योगदान कर सकें। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार से जोड़ने में पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी आरसीटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में धर्मशाला में भी ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 30 बैचों में 838 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। अब इस वित्त वर्ष में 1000 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है पीएम श्री और भविष्य के लिए तैयार

0: स्कूलों की दिशा में भारत की पहल, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का है।
1: 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप 14,500 से अधिक मॉडल उत्कृष्ट स्कूलों का विकास करना है। वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 27,360 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ ये योजना छात्रों को 21वीं सदी के कौशल से लैस करने के साथ साथ अवसंरचना, शिक्षण शास्त्र, समावेशिता और संवहनीयता को मजबूत करती है। जुलाई 2026 तक लक्ष्य के लगभग 90% हिस्से को पूरा करते हुए 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 13,092 स्कूलों का चयन किया जा चुका है, जिनमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों का चयन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के आधार पर 3 चरणों वाली चैलेंज मोड प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। आसपास के स्कूलों के लिए मार्गदर्शक संस्थानों के रूप में परिकल्पित पीएम श्री स्कूल केवल अवसंरचना के विकास के बजाय एक समग्र, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। भारत में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जिसमें गुणवत्ता, समानता, समावेशिता और भविष्य के लिए शिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। 14,71,000 स्कूलों में 24,69,00,000 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत की शिक्षा व्यवस्था का ध्यान अब सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने और एक ऐसा सक्षम वातावरण तैयार करने पर केंद्रित है, जो हर छात्र के सर्वांगीण विकास में मदद करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बदलाव के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है, जबकि पीएम श्री पहल स्कूल स्तर पर इसके दृष्टिकोण को लागू करती है, जिससे नीतिगत उद्देश्यों को संस्थागत व्यवहार में बदला जा सके। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू की जाने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के केंद्र में शिक्षा का एक ऐसा नजरिया है, जो जीवन भर सीखने को बढ़ावा देता है और छात्रों को सीखने, पुरानी बातें भूल कर नई बातें सीखने व फिर से सीखने की क्षमता और सोच देता है। पीएम श्री योजना को 2022-23 से 2026-27 तक यानी 5 साल के लिए लागू किया जा रहा है। इस योजना की कुल लागत 27,360 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 18,108 करोड़ रुपए है। परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए खर्च में केंद्र का हिस्सा 2023-24 में 2,520 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 5,224 करोड़ रुपए हो गया है। ये लगभग 107% की बढ़ोतरी है, जो पीएम श्री स्कूलों को मजबूत करने में निवेश के बढ़ते दायरे को दिखाता है। पीएम श्री स्कूल जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त संरचित व्यावसायिक विकास पहल के माध्यम से शिक्षक क्षमता और संस्थागत नेतृत्व को मजबूत करते हैं। पहल के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए प्रति DIET 3,00,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि विषय शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, विशेष शिक्षकों, ICT अध्यापकों और मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति अध्यापक 2,500 रुपए तक की सहायता दी जाती है। पीएम श्री पहल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,092 चुने हुए स्कूलों का एक बड़ा राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया है। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद NCERT के तहत आने वाले संस्थान भी शामिल हैं। इस पहल ने 725 जिलों और 8,340 ब्लॉक व शहरी स्थानीय निकायों को कवर करते हुए एक व्यापक भौगोलिक पहुंच हासिल की है, जिससे देश भर में एक विस्तृत संस्थागत और क्षेत्रीय उपस्थिति बनी है। इस नेटवर्क का दायरा और विविधता पीएम श्री स्कूलों की बढ़ती पहुंच को दर्शाते हैं। पीएम श्री स्कूल के विकास के लिए सिर्फ अवसंरचना पर ध्यान देने वाले नजरिए से हटकर सर्वांगीण, समावेशी, समान और भविष्य के लिए तैयार शिक्षण संस्थान बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। इसी के साथ सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। 3:10 हुए हैं। अब सुनिए आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
3: पा रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तो सामने वाला हो सकता है हमारी परेशानी का हल ढूंढ के हमें दे दे।
4: बिल्कुल आरती, और कभी कभी जीवन में परेशानियाँ इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, और ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है कि आपस में बातचीत की जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार उदास दिखाई दे और लोगों से दूर रहने लगे, अलग अलग सा अपने आप को रखे, निराशा की बातें करे या कहे कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, तो उसकी बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के बच्चे हों, चाहे कोई भी हो व्यक्ति
3: आपके साथ मित्र भी हो सकता है।
4: हाँ, मित्र भी हो सकता है। तो कभी भी कुछ ऐसा आपको या उदास भी आपको दिख रहा है, तो आप उसकी उदासी को दूर करने के लिए उससे घुले मिले, उससे दिल की बात जानने के लिए आगे आइए, जिससे वो अपनी बातों को आपसे कह सके और आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई तुम्हारी बातें मैं अपने तक ही रखूँगा, है ना।
3: बिल्कुल, और किसी को भी अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है तो उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करने के बजाय उसकी बात को धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए, उसे इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है और हर परेशानी का हल शांति और समझदारी के साथ निकल सकता है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े समाधान ज़रूरी नहीं होते, कभी कभी किसी की बात को ध्यान से अगर हम सुन लेते हैं ना तो वही बड़ी बात हो जाती है, या फिर हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल लें, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है, तो बहुत मायने रखती है। इतनी
4: बिल्कुल सही बात है, ऐसे में साथ बहुत ज़रूरी होता है किसी का भी, और इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि परेशानियों से जूझना मुश्किल हो रहा है, माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप तुरंत बात करें, और अगर हमारी जानकारी में कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कुछ सरकारी व निशुल्क हेल्पलाइन सेवाओं का संपर्क भी किया जा सकता है।
3: बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं, और साथ ही वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम तय की गई है, जो कि है आत्महत्या पर धारणा को बदलना, और जिसका उद्देश्य इसके इर्द गिर्द के सामाजिक कलंक को कम करना और खुलकर बातचीत को शुरू करना है, जिससे कि बातचीत होने से हमारा तनाव भी कम होता है और हम अपनी परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं।
4: बिल्कुल, और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री की, जोधैया भाई बैगा, जो कला से संबंधित है और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली। जोधैया भाई ने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय तक बेहद गरीबी और कड़े संघर्ष का सामना किया। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उन्होंने रंग और कूची थामी और देखते ही देखते कला जगत का एक बड़ा नाम बन गई।
3: बिल्कुल। और जोधैया भाई, जिन्हें लोग जोधैया अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बैगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाना माना नाम है। एक मजदूर से चित्रकार तक पहुंचने का जोधैया बाई का जो मार्ग था वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा।
2: बिल्कुल। और जब जोधैया बाई के पति मैकू बैगा का निधन हुआ, उस समय जोधैया बाई के 2 मासूम बच्चे उनके साथ थे और तीसरी संतान गर्भ में थी। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए मजदूरी करते हुए जोधैया बाई ने अपनी तीसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया।
3: बिल्कुल। और बेटी के जन्म के साथ ही जोधैया बाई को कमजोरी ने घेर लिया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें अपने ही शरीर की कमजोरी के साथ लड़ने को विवश कर दिया था। परिणाम स्वरूप बेटी के जन्म के साथ ही वो एक बार फिर जीवन के रण में दुखों से संघर्ष करने के लिए उतर पड़ी थी।
2: और पीठ पर मासूम बच्ची को बांधकर जोधैया बाई गाय, भैंस, बकरी चराने जाती थी। जंगल में वापसी में लकड़ियां बिन कर लाती थी और जिसका बोझ भी उनके अपने सिर पर होता था। गांव में लोगों के घरों को लीपना, आंगन और दीवारों को गेरू से सजाना, खेत में मजदूरी करना, यही उनके जीवन की भाग दौड़ थी। यानी बहुत ही संघर्ष भरा उनका दिन था।
3: बिल्कुल। और संघर्ष से जूझ रही जोधैया बाई के जीवन में बदलाव तब आना शुरू जब आशीष स्वामी ने लोढ़ा गांव में अपना स्टूडियो जगन तस्वीर खाना खोला और स्थानीय लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा, जिसमें जोधैया बाई का बड़ा बेटा भी शामिल था। एक दिन आंगन लीपने के लिए वो अपनी माँ जोधैया बाई को स्टूडियो ले गया था और साथ ही जोधैया बाई ने अपनी ही शैली में उस आंगन को ऐसे लीपा और उसे गेरू और छुई मिट्टी से ऐसे सजा दिया कि उसे देखकर आशीष स्वामी इतना खुश हुए कि उन्होंने जोधैया बाई जैसी बुजुर्ग महिला से, और लेकिन साथ ही साथ वो उनसे काम कराने पर थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि आपने इतनी उम्र दराज महिला से कैसे काम कराया। और इस दौरान उन्होंने सुरेश बैगा ने, जो उनके बेटे थे जोधैया बाई के, उन्होंने बताया कि उनकी माँ अभी भी मजदूरी करती हैं
2: और आशीष स्वामी ने उन्हें अम्मा करके संबोधित किया और कहा कि अब से अम्मा मजदूरी नहीं करेगी बल्कि चित्र बनाएंगी। जोधैया बाई ने बताया कि जब आशीष स्वामी ने उन्हें चित्र बनाने का काम दिया तो वे घबरा गई थी। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि ये लिखने पढ़ने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। तब आशीष स्वामी ने उन्हें उनसे दीवार पर चित्र बनवाया। बाद में लकड़ी और सूखे कुम्भड़े, लौकी और तरोई पर चित्र बनवाए। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कागज़ दिया तो वे डर गई कि कागज और रंग दोनों ही खराब हो जाएगा, लेकिन आशीष स्वामी ने उन्हें थोड़ा डांट कर चित्र बनाने के लिए कहा।
3: बिल्कुल। और जब गुरुजी की डांट पड़ने लगी तो 70 साल की आयु के करीब पहुंच चुकी जोधैया बाई किसी मासूम बच्चे की तरह अपने घर में छिप जाती थी और उन्होंने उनके जो गुरुजी थे उनके घर जाते और उन्हें जबरन अपने स्टूडियो ले आते। उनकी पेंटिंग्स में बैगा समुदाय की परंपराएं, लोक कथाएं, देवी देवता और विशेष रूप से प्रकृति, जैसे कि महुआ का पेड़, जंगली जानवर और पक्षी, एकदम जीवंत रूप में दिखाई देते थे।
2: और उनकी बनाई पेंटिंग्स को देश विदेश में बेहद पसंद किया गया। उनकी कलाकृतियों को

0: प्रदर्शनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भोपाल और दिल्ली के अलावा पेरिस, फ्रांस और मिलान, इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की गई। जब वर्ष 2022 में जोधैया बाई को राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान मिला था, तब स्वर्गीय आशीष स्वामी की तस्वीर के सामने बैठकर जोधैया बाई काफ़ी देर तक रोती रही थी।
1: बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया था
0: जी,
1: उस जगह तक पहुँचाया।